मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास।

0: इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th governing council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The governing council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This governing council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a of renewed confidence. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace.
1: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: In his address, Mr. Modi said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-2026. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwa, Sabka Prayas has connected people across the country. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, German Federal Chancellor Friedrich Merz, Canadian Prime Minister Mark Carney and Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu for their warm wishes and messages. In a social media post, Mr. Modi thanked his Italian counterpart Giorgia Meloni for her warm wishes. In another post, the Prime Minister thanked Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim for his warm wishes and kind words. He also thanked German Chancellor Friedrich Merz for his warm words. Meanwhile, US President Donald Trump has described Prime Minister Narendra Modi as a great one. In a social media post, President Trump said, Mr. Modi is a strong, healthy and wise man and will have many years of greatness and success ahead of him. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Bulgaria's Prime Minister Rumen Radev in Sofia yesterday. Dr. Jaishankar highlighted India's robust bilateral ties, recent opportunities created by the strengthening India-Bulgaria strategic partnership and the imperative for closer bilateral cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile world. In a social media post, he said they discussed deepening collaboration in trade and investment, pharma, semiconductors, AI, space, defense, mobility, tourism and creative entertainment industry. The External Affairs Minister will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta talks. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं. सुबह के 6:10 हुए हैं. प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम. आरंभ समूह स्वर में मातृवंदना से।

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। पंडित जसराज के सुर में प्रस्तुत है ये भजन।

पंडित जसराज के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। किसान भाई कृषि संकेत में सुने ट्राइकोडर्मा विषय पर जान

0: magari.
1: भैया बहनी एक मेर के जब मने लगातार फसल लेत करत है खेती खाड़ी में और कई एक मेर के उर्वरक खादी डाल रहे थे तो माटी के उर्वरक शक्ति में देखी कमी आ जाती। एकर देखी कई एक ठिकारण है माटी में जैविक कार्बन के लगातार घटत स्तर, प्रयोग किए जाए वाले उर्वरक के उपयोग क्षमता के कम हो, मृदा क्षरण से पोषक तत्वों के धीरे धीरे ह्रास, उर्वरक का असंतुलित प्रयोग और देश के कई एक भागन में उर्वरक के प्रयोग में असमानता, सघन खेती का प्रचलन जोने से एक साथ है कई एक पोषक तत्वों की कमी हो जाती और माटी के सूक्ष्म पोषक तत्व के प्रयोग न हो। देखिए उर्वरकता का बनाए रखे के खातिर कुछ सुझाव का है। उर्वरक के प्रयोग हमेशा माटी परीक्षण के आधार और फसल विशेष के संस्तुत के आधार में करे चाहिए। उर्वरक प्रबंधन एक फसल मनकई के पूरे फसल चक्र में अपनावे। फसल चक्र में हरी खाद, फसलन के अवशेष और दलहनी फसलन के समावेश करे चाहिए। दलहनी फसलन में जैविक उर्वरक के प्रयोग करे और फसल चक्र में फसल चक्र के चुनाव यह मेरे से करे कि प्रथम फसल में जो बचे हुए पोषक तत्व तो हैं उनका सही उपयोग हो सके और माटी के पोषक तत्व का सही अवशोषण मिल जाए। उर्वरकन के प्रयोग हमेशा संतुलित रूप में करे जो से उर्वरक प्रयोग क्षमता में वृद्धि हो सके और सघन खेती में समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन अपनावे जिनमें माँ उर्वरकन के साथ गोबर के खाद, हरी खाद, फसलन के अवशेष और जैविक उर्वरक के प्रयोग किए जाए। नेत्रजन उर्वरक के प्रयोग कई एक बार करें और फास्फोरस के प्रयोग रबी फसलन में करें। और देखिए क्या होता है कि माटी में कई एक मेर के ऐसे रोग लग जाते हैं ता माटी में जाऊँ मृदा जनित कवक से दलहनी तिलहनी सब्जी और नकदी फसल जैसन के कपास, मूंगफली, चना, जीरा इनमें सर्वाधिक नुकसान पहुंचावत हैं। मृदा जनित कवकन का जड़ गलन, तना गलन और काला रॉट उल्खा या में से रोग उत्पन्न होते हैं। ये रोगन के रोकथाम के खातिर ट्राइकोडर्मा नामक मित्र फफूंद विकसित की गई है और यह ट्राइकोडर्मा माटी में स्थित रोग उत्पन्न करे वाले हानिकारक कवकन के विरुद्ध रोग के उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं जो उन्हें हानिकारक कवक फसल के जड़न के आसपास नहीं पनपे और रोग उत्पन्न करे में वो असमर्थ हो जाते। देखिए यह जो कवक और फंगस हो जाते इनका मनई कैसे दूर करे एक एक खातिर सबसे पहले बीज उपचार करे चाहिए। फसल जौन की भूमि जनित कवक रोगन से ग्रसित है वही बीज का बीज उपचार के खातिर कोने साफ बर्तन में रख के बीज में थोड़ का पानी के छींटा दे के 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा संवर्धन प्रति किलो बीज के दर से मिलाए के निकाह के उलट पुलट कर दे और यह देख ले चाहे कि संवर्धन के एक समान परत बीजन के चारों कई चिपक गए। फिर बाद में बीज की बुवाई करे। बुवाई के पहले बीजन का बीजो चार एक निश्चित क्रम में करे। पहले बीजन का क्रमशः थायरम 2 से 2.5 ग्राम, फिर कीटनाशी, फिर राइजोबियम कल्चर और अंत में ट्राइकोडर्मा कल्चर 10 ग्राम से बीज उपचारित करना चाहिए। अब देखिए एक विधि का है फफूदनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा और संवर्धन एक ही उपचार से देखिए का लाभ होते हैं। ट्राइकोडर्मा कई एक फसलन जैसन के कपास, मूंगफली, चना, अरहर, सरसों इनमें भूमि जनित फफूंद रोग जैसन के जड़ गलन, उकठा और तना गलन के नियंत्रण में प्रभावी होते। इनके संवर्धन से पोषक तत्व तो और उपलब्धता बढ़ जाती, पौधन का उचित विकास और अधिक उत्पादन प्राप्त होते। यह वायुमंडलीय नत्रजन स्थिर करे वाले जीवाणु राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और फास्फेट विलेयक जीवाणु पी के योग्य होते। देखिए उपचार करे के समय कुछ सावधानी हमका पचेगा बरते चाहिए और एकर जानकारी हो चाहिए। कल्चर का सीधे धूप और गर्मी से बचा के छांदार स्थान में भंडारण करे चाहिए। कल्चर के पैकेट में जो समाप्ति की आखिरी डेट लिखी रहती ओके पहले उपयोग करे चाहिए। बीज का ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद से उपचारित करे के बाद कौने निकाह अन्य कवक नाशी रसायन से बीज का उपचारित न करे चाहिए। भूमि उपचार के खातिर ट्राइकोडर्मा के निर्धारित मात्रा का गोबर के खाद में मिला दे अब बीज और भूमि के उपचार में अनुमोदित मात्रा के उपयोग करें। देखिए यह में से हम पंचे सावधानी कह के और ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद डाल के उसका फंगस और फफूंद से बीज का बचा सके थे।
0: किसान भाई अभी कृषि संकेत में सुन रहे थे ट्राइकोडर्मा के विषय में जानकारी। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस से पाठ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्रीराम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्रीराम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

समूह स्वर में अभी आप रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज सवेरे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग का समय होगा 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल में 7:21 पर नियमित चर्चा के अलावा आप सुनेंगे मौसम पूर्वानुमान, लोकगीत और डॉक्टर सुधाकर तिवारी की बघेली कहानी विधि की लकीर। सुगम संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे 10:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 7:20 पर और 9:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासितप्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य चत्वारिंशदधिकैकशत कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा

0: कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में।

0: प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा, देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे, जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें आधारभूत मानव पूंजी, भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकरण विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है, देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: इसके पूर्व एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भावनात्मक पत्र लिखा है। डॉ यादव ने इस विशेष उपलब्धि पर श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, अधोसंरचनात्मक विकास तथा देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची कल जारी कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा द्वारा जारी सूची में भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। इससे पहले 9 जून को कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस आज इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 15 जून को शिलांग के मावक सियांग स्थित लारिती परफॉर्मिंग केंद्र में पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी एनईआई इंफ्रा शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। मेघालय सरकार 15 और 16 जून को पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और एनईआई इंफ्रा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ 8 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है, जिसके आज के अंक में हम पेश कर रहे हैं सरकार द्वारा युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23

0: लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कल ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण हाट में विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प, प्राकृतिक खेती आधारित उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शित वस्तुओं को देखा। वहीं मंडला की मिलेट क्वीन लहरी बाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। 12 जून को कृषि मंत्रियों का एक विशेष संवाद भी इस सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू करके यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, वातानुकूलन और वेंटिलेशन सिस्टम तथा आपातकालीन निकास द्वार और अग्निशमन उपकरण सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी। इसके साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। सामान्य परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक, आदिवासी संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून आने के पहले की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। चक्रवात के दो अलग अलग सिस्टम बनने से कल कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आंधी बारिश का यह दौर कल भी जारी रह सकता है और प्रदेश में मानसून के अगले सप्ताह सक्रिय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इंदौर और आसपास के जिलों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थयात्रा आयोजित की जा रही है, जो कि 20 जून को शुरू होगी। इस यात्रा में इंदौर के साथ धार, बड़वानी और देवास के वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का समापन कल 13 राज्यों के पारंपरिक और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति के साथ हुआ। मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने कल जिला मुख्यालय में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। शिवपुरी कलेक्टर ने आवास प्लस के लंबित आवासों की लंबित सभी किश्तों का भुगतान समय सीमा में करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे होने पर झाबुआ में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुना में जिले की सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए चारा विकास कार्यक्रम के तहत साइलेज एवं गोरस ऐप की उपयोगिता विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर के ग्राम माचल में MPIDC द्वारा अत्याधुनिक एवं एकीकृत लॉजिस्टिक हब के लिए 23 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। झाबुआ के राणापुर में SDM ने फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए और पन्ना टाइगर रिजर्व में विशेष स्वच्छता पखवाड़े के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर से प्लास्टिक कचरे को हटाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं दो आंखें 12 हाथ फिल्म के गीत से। आवाजें लता मंगेशकर और साथी की, गीत पंडित भरत व्यास का और संगीत वसंत देसाई का है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हरिहरन की आवाज में आइए सुनते हैं शिव महिमा फिल्म का गीत। गीत नंदलाल पाठक का और संगीत अरुण पौडवाल का है।

हरिहरन के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 7:30 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। ये पंक्तियां हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी की जिनके मन और तन दोनों समर्पित थे माँ भारती को, और उन्हीं को नमन करेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है आज के आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है सभी श्रोताओं का, सभी मित्रों का, सभी साथियों का। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
1: गुड मॉर्निंग देवेंद्र। वी वेलकम लिसनर्स टू आवर थर्सडे मॉर्निंग एडिशन ऑफ आज सवेरे। सो देवेंद्र, अ बिट ऑफ दिस, अ बिट ऑफ दैट, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम टुडे, ओके? सो स्टे विद अस लिसनर्स एंड एंजॉय द प्रोग्राम। सो फॉर स्टार्टर्स देवेंद्र, लेट्स गिव देम सम न्यूज़ हेडलाइंस।
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे और सभी समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित हैं। इनमें आधारभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that it policies are correct and its direction is right. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest serving elected prime minister.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रिजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच हुई बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। ये देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है।
1: Prime Minister Narendra Modi has praised the performances of Indian sportspersons and urged the nation to set ambitious targets for the Olympics. Speaking at the NDA conclave in New Delhi, Mr. Modi highlighted the achievements of young athletes and the rapid growth of sports in India, while stressing the need to aim higher on the global stage. Prime Minister said Indian youth are performing remarkably well in sports and their performances continue to improve with each passing day.
2: Sports mein toh Bharat ke yuva कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
0: संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद ने संगीत नृत्य, रंगमंच, लोक, जनजातीय कलाओं और कठपुतली सहित विभिन्न क्षेत्रों के 108 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना है। वहीं 106 युवा कलाकारों का चयन उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों के लिए चयन किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये की राशि, ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम प्रदान किया जाएगा। वहीं अकादमी रत्न के साथ 3,00,000 रुपए और अकादमी पुरस्कार के साथ 1,00,000 रुपए की सम्मान राशि, ताम्रपत्र तथा अंग वस्त्रम प्रदान किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे, जबकि युवा पुरस्कार अकादमी के अध्यक्ष द्वारा विशेष समारोह में दिए जाएंगे।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar met Bulgaria's

0: Prime Minister Rumen Radev in Sofia yesterday. The External Affairs Minister highlighted India's robust bilateral ties, recent opportunities created by the strengthening India-Bulgaria strategic partnership, and the imperative for closer bilateral cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile world. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed deepening collaboration in trade and investment, pharma, semiconductors, AI, space, defense, mobility, tourism, and the creative entertainment industry. They also exchanged views on regional and global issues of mutual interest. Earlier in the day, Dr. Jaishankar visited the National Historical Museum in Sofia. He explored the museum's collection of artifacts spanning millennia and gained a deeper appreciation of how Bulgaria has preserved the many facets of its rich history and cultural heritage. Dr. Jaishankar will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta Talks. The talks will be held on the theme, A World in Transition, Global, Regional and Local Perspectives.
1: भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू करके यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा अग्नि सुरक्षा प्रणालियों का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें सुधार की आवश्यकता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, वातानुकूलन और वेंटिलेशन सिस्टम, आपातकालीन निकास द्वार और अग्निशमन उपकरण सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रेलवे स्टेशन आग जैसी आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार रहें। मंत्रालय ने बताया कि ऑडिट में निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन का भी आकलन किया जाएगा। निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पाई गई किसी भी कमी को तुरंत सुधारात्मक उपायों के माध्यम से दूर किया जाएगा। रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में सुरक्षा और संरक्षा को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अग्नि सुरक्षा ऑडिट रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और आपातकालीन तैयारियों में सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। और सुभद्रा, सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, क्योंकि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बहुत होती हैं, तो ये दुर्घटनाएं न हो इसके लिए सभी को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं।
0: Canada has introduced legislation that could bar children under 16 from having social media accounts unless companies can prove their platforms are safe. The bill would require platforms to obtain exemptions by demonstrating adequate safeguards. The legislation targets seven categories of harmful content, including material that encourages self-harm, incites violence or hatred, and non-consensual intimate images. It would establish a Digital Safety Commission of Canada through exemption criteria will be announced later. Culture Minister Mark Miller said creating the regulator could take up to 18 months. Canada joins countries including Australia, Brazil and Indonesia in imposing or proposing age-based social media restrictions.
1: देश और दुनिया की इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम चलते हैं अपने महानगरों की ओर, जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या खबरें आपके पास हैं।
0: यस देवेंद्र, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द तमिलनाडु लॉरी ओनर्स एसोसिएशन हैज रिजॉल्व टू रेज फ्रेट रेट्स बाय 25% विद इफेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ जून, साइटिंग इंक्रीजिंग डीजल प्राइसेस। द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड बाय स्टेट प्रेसिडेंट सी धनराज आफ्टर एन एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग मेंबर्स रिव्यूड कंसर्न्स सच एज द राइज इन diesel costs, freight tariffs, association subscriptions, and fines imposed on trucks found to be overloaded. Zoho Corp has built an indigenously designed and manufactured server platform as part of its plan to own the technology stack from hardware to end applications and reduce costs. The company designed key components including the motherboard, microcontrollers, data center secure control modules, network interface cards, firmware, and chassis assembled locally through Indian EMS partners. It was developed in collaboration with Intel India, tapping their capabilities and technical expertise. Moving to Bengaluru now, the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, under the Ministry of Science and Technology is hosting the RISE, RISE Conclave 2026 in Bengaluru with the theme Innovation and Entrepreneurship, Driven Growth for Viksit Bharat 2047. Organized by the CSIR and its laboratories, the two-day conclave will bring together over 800 delegates from academia, industry,

0: startups, research institutions, and government agencies. The event will focus on aerospace technologies, artificial intelligence, and agri-food sector through panel discussions, keynote sessions, and startup exhibitions. The Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka, in collaboration with IIIDEM, the Election Commission of India, and International IDEA, organized an international stakeholder validation workshop on technology-driven voter registration, TDVR, in Bengaluru yesterday. The workshop reviewed findings from a global study covering 87 election management bodies across six continents, examining technology-enabled voter registration systems and identifying five major registration models. Moving to Hyderabad now, Telangana is set to guide the industrial development of the Republic of Ghana, particularly in establishing a major pharma hub. During a high-level meeting at the Dr. B.R. Ambedkar Telangana Secretariat, a Ghanaian delegation led by Presidential Advisor Augustus Obuadum Tano met with Telangana's IT and Industries Minister Rudila Sridhar Babu to discuss strengthening bilateral ties. The delegation sought Telangana's support for Ghana's economic transformation, highlighting the ambitious 24-hour economy and accelerated export development program. State Minister Sridhar Babu assured full cooperation, offering to share Telangana's world-class expertise in pharmaceutical manufacturing, vaccine production, research and global supply chain management. Devendra, let's hear from other metro cities.
1: Ji. केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली के पिंजरा पोल गौशाला में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन तथा देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन तथा राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बिना किसी अवकाश के निरंतर राष्ट्र सेवा का अनूठा उदाहरण बताया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कल लोक निवास में युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से आए 65 युवा प्रतिभागियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया। इस कार्यक्रम का समन्वय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री संधू ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित युवा संगम देश की विविधता में एकता को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण को रूप देता है और युवाओं को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी के 5 प्रमुख आयामों के माध्यम से देश को निकटता से समझने का अवसर प्रदान करता है। दिल्ली नगर निगम और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अनुमान तैयार करने, सड़क निर्माण और अभियंताओं की क्षमता बढ़ाने के काम को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन के अंतर्गत CSIR सड़कों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी सहायता देगा। इस अवसर पर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि ये सहयोग सड़क के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और दिल्ली के प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी के एक मामले में सहकारी बैंक के उपप्रबंधक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर एक फर्जी अकाउंट के संचालन में शामिल होने का आरोप है, जिसका संबंध देश भर में दर्ज 159 साइबर ठगी की शिकायतों से है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बैंक खाते के जरिए करीब 67 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आगे की जांच जारी है। और रुक करते हैं महाराष्ट्र का, मुंबई का, जहां महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराडे ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से प्रभावित फलों की बागवानी के नुकसान का आकलन जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को समय पर सहायता सुनिश्चित की जाए। बुधवार को मुंबई में एक बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि इस वर्ष मई और जून के दौरान 27 जिलों में 61,000 हेक्टेयर से अधिक भू क्षेत्र की खेती प्रभावित हुई है, जिसमें 18,000 हेक्टेयर से अधिक केले की खेती शामिल है। मंत्री ने बीमा कंपनियों से भी आग्रह किया कि वे बीमित और गैर बीमित दोनों किसानों को हुए नुकसान का सटीक आकलन करें, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन तकनीक का उपयोग भी शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि प्रभावित किसानों तक मुआवजा बिना किसी देरी के पहुंचाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने फसल बर्बादी और कर्ज के बोझ से दबे किसान परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राजस्व एवं वन विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी कर संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे जिलेवार आवश्यकताओं के अनुसार इन निधियों का वितरण शीघ्रता से करें। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमरावती मंडल को सबसे अधिक 8 करोड़ 76 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद संभाजीनगर, नागपुर, नासिक, पुणे और कोंकण मंडल का स्थान है। इस कदम का उद्देश्य राज्य भर में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत पहुंचाना है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को अधिकारियों को विभाजन के बाद सिंधी शरणार्थियों को आवंटित संपत्तियों के लिए माफी योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। योजना की समीक्षा करते हुए श्री बावनकुले ने पाया कि 15 मई को योजना समाप्त होने के बाद भी लगभग 85% आवेदन लंबित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासनिक देरी के कारण किसी भी पात्र लाभार्थी को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम ने शहर भर में पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र वितरित करना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य फेरी लगाने की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाना और पंजीकृत विक्रेताओं की पहचान को आसान बनाना है। लगभग 99,000 पात्र स्ट्रीट वेंडरों में से अब तक लगभग 20,000 विक्रेताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। बुधवार को मुंबई की मेयर रितु तावड़े के कार्यालय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुख्यमंत्री कार्यालय और बृहन मुंबई नगर निगम के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजे जाने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने बम डिटेक्शन दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से सभी स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और परिसर को सुरक्षित घोषित किया गया है। पुलिस ने ईमेल के स्रोत का पता लगाने और भेजने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू की है। साइबर विशेषज्ञ भी इस जांच में सहयोग करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि धमकी वास्तविक थी या फर्जी। आगे की जांच जारी है। कोलकाता चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने बुधवार को कोलकाता स्थित नबन्ना में पदभार ग्रहण किया और घोषणा की कि उनका प्राथमिक लक्ष्य करों में वृद्धि किए बिना राजस्व अर्जन को बढ़ावा देना है ताकि राज्य के आर्थिक विकास को गति मिल सके। विभिन्न विभागों के सचिवों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य वर्तमान में राजस्व संग्रह के अपने मौजूदा स्रोतों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहा है और इन अप्रयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चूंकि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अब राज्य के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए राज्य बजट तैयार करने में कुछ चुनौतियां हैं राज्य के समक्ष। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से विशेष भविष्य की योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। महानगरों की खबरों के बाद हाल मौसम का जान लेते हैं। महानगरों का, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंधी के साथ और बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। सुभद्रा, गर्मी बहुत है तो इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन शाम को दिन का तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहेगी। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा और सुबह काफी सुहाना मौसम रहा। मुंबई में आज आंशिक बादल छा सकते हैं और एक दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मुंबई में भी लोग मानसून के आने का इंतजार कर रहे हैं और समय भी हो चुका है मुंबई में मानसून के आने का। न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 34 डिग्री रहने की संभावना है और कोलकाता में बारिश सुबह सुबह शुरू हो रही है और कुछ जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना कोलकाता के क्षेत्रों में रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा ऐसा अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुभद्रा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
0: यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन ऑफ थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेंपरेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेंपरेचर was 21 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 25 and maximum of 37 degrees Celsius. And Devendra, today, before we move forward, we talk about today. What is it today? International Day of Play is being observed today globally. Ji. This day marks a significant milestone, of course, in efforts to preserve, promote and prioritize playing so that all people, especially children, can reap the rewards and thrive to their full potential. And also, of course, you know, they need to throw away their mobile phones and gaming devices and go out and enjoy, play games with their children and
1: mental
0: stuff.
1: Mental or physical
0: of course,
1: development
0: very,
1: ke liye
0: yes,
1: bahut
0: of course.
1: Hai,
0: yes.
1: Physical activity ho. Aur
0: yes.
1: Uske liye khel sabse best madhyam hote hai.
0: Yes.
1: Jisme bachche sirf khelte nahi, apne aap ko fit nahi rakhte, balki enjoy karte hai.
0: Yes. Social connection is there. Yeah. And this is also a chance, an opportunity for parents to join in fun, laughter and spend some time educating their loved ones about spending time outdoors, bonding with kids, other kids, and also learn new activities other than their social work, their school work, I mean.
1: So, this is very important for children to play outside.
0: Yes, and moving on to the history section now. 1866, the Allahabad High Court was officially established, originally as the High Court of Judicature for the Northwestern Provinces at Agra. It was later shifted to Prayagraj, formerly Allahabad, in 1869, with its name officially changing to the High Court of Judicature at Allahabad on March 11,
1: 1919. Ji, aur aaj ke din, yani 11 June ko 1770 mein कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी और 11 जून 1921 को ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था
0: 1991 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज MS-DOS 5.0 अ मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट दैट रेवोल्यूशनाइज्ड अर्ली पीसी मेमोरी मैनेजमेंट एंड यूजर फ्रेंडलीनेस एंड 2002 द रियलिटी कंपटीशन टीवी सीरीज अमेरिकन आइडल डेब्यूट इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज इन द यूनाइटेड स्टेट्स
1: जी और इससे कुछ पहले चलते हैं तो वर्ष 1935 में आज ही के दिन एडविन आर्मस्ट्रांग ने पहली बार FM का प्रसारण किया था और 1940 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देश इटली ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और इटली की वायुसेना ने सबसे पहले माल्टा द्वीप पर इसी दिन हमला किया था
0: एंड 2010 द 19th मेंस फीफा वर्ल्ड कप ओपन इन द होस्ट कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका marking the first time that the tournament was played on the African continent.
1: Ji, aur ab aage badhte hain.
0: Yes.
1: Naman aur smaran un mahan vibhutiyon ka jinke jeevan, jinke vichar, jinke karma aaj bhi hamare liye margdarshak hain. Is kram mein jis kavita ka zikr maine aarambh mein kiya tha, usi ko phir se padhna chahunga. Na chahun maan duniya mein, na chahun swarg ko jana, mujhe varde yahi mata, rahun Bharat pe deewana. Karun main qaum ki seva, pade chahe karono dukh, agar phir janm loon aakar to Bharat mein ही हो आना लगे इस देश के ही अर्थ मेरे धर्म विद्या धन करूं मैं प्राण तक अर्पण यही प्रण सत्य है ठाना नहीं कुछ गैर मुमकिन है जो चाहो दिल से बिस्मिल तुम उठा लो देश हाथों पर न समझो अपना बेगाना कुछ नाम इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर देश प्रेमी के दिलों में बस जाते हैं ऐसा ही एक नाम राम प्रसाद बिस्मिल का है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 जून 1897 को जन्मे क्रांतिकारी बिस्मिल में एक संवेदनशील कवि भी था जो बचपन से ही देश को आजाद होने का सपना देखता था अंग्रेजों के अत्याचार बढ़े तो उन्होंने कलम के साथ संघर्ष का रास्ता चुना और लिख दिया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है इन पंक्तियों ने क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की चाह को और बढ़ा दिया था जिन क्रांतिकारियों से विदेशी हुकूमत भयभीत रहती थी उनमें थे रामप्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान जैसे वीर इन्हीं वीरों ने 1925 में काकोरी ट्रेन लूटी उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के संसाधन जुटाना था गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपने साहस और देशभक्ति को कभी कमजोर नहीं होने दिया 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई और ऐसे असंख्य राष्ट्रसेवियों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया

0: भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपनी सेवा से समृद्ध किया। ऐसा ही एक नाम है के सदानंद हेगड़े का। उन्होंने न्यायपालिका, संसद और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। 11 जून 1909 को जन्मे के एस हेगड़े एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और समर्पित शिक्षाविद थे। उनका जीवन सत्य, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत राज्यसभा सदस्य के रूप में की और 1957 में जब मैसूर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए तो उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। और हम स्मरण कर रहे हैं मराठी साहित्य और इतिहास जगत के एक अनमोल रत्न वासुदेव वामन शास्त्री खरे का। वर्ष 1859 में जन्मे खरे इतिहासकार, एक संवेदनशील कवि, प्रतिभाशाली नाटककार और प्रेरक जीवनी लेखक थे। उन्होंने अपने लेखन से इतिहास को जीवंत बनाया और समाज को अपनी विरासत से जोड़ने का काम किया। 11 जून 1924 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके शब्द और विचार आज भी ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश फैलाते हैं।
1: Long time drummer of ZZ Top, Boogie Blues rock band from Texas, Frank Beer celebrates his birthday today. Frank was formerly with the Cellar Dwellers, the Hustlers, the Warlocks and the American Blues bands before starting to perform and record with Billy Gibbons and Dusty Hill as ZZ Top. Here goes. Happy birthday, Frank.

0: लंबी दूरी के भारतीय तैराक मिहिर सेन को भी हम नमन कर रहे हैं। वो 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले पहले भारतीय थे और चौथे सबसे तेज तैराक बने जिन्होंने ये उपलब्धि 14 घंटे 45 मिनट में हासिल की। वो एक कैलेंडर वर्ष 1966 में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। और इन्हीं महान विभूतियों को नमन करते हुए अब आपसे चाहेंगे आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। Friends, have a great day.
0: Namaskar.

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्ष

0: अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने

0: आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली पांच है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
7: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। प्राइम मिनिस्टर सेज लिफ्टिंग मोर देन 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग पास्ट 12 इयर्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट शोज दैट इट्स पॉलिसीज आर करेक्ट एंड मूविंग इन राइट डायरेक्शन। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स प्लान्स टू चैनल इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1,00,000 करोड़ रुपीज इनटू वेस्ट बंगाल। IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender
10: a socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा।

0: आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधववरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंचशुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार

नियुक्त किया, जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

0: मध्य प्रदेश की।
1: और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, पेश है फिल्म संगीत। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। दरो दीवार पे हसरत से ये नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं, अब ना अहले वल वले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में आइए सुनते हैं हम एक दूजे के लिए फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम के। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में आइए सुनते हैं मजेदार फिल्म का गीत। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथी की आवाज में आइए सुनते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र रावल ने और संगीत राम लक्ष्मण का है।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

द जेंटलमैन। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत, युगलस्वर चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम के। गीत इंदिवर का और संगीत अनु मलिक का है।

आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कविता कृष्णमूर्ति और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में आइए सुनते हैं दुश्मनी फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

एला अरुण और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में आइए सुनते हैं मुत्तु महाराज फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं पीके मिश्रा ने और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक पसंद अपनी अपनी। नाटक के लेखक थे विलियम शेक्सपियर, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी और रूपांतकार दिनेश राय। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख है विवेक दांगी का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक दांगी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। निवाड़ी जिले में आजकल मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कभी धूप है तो कभी हल्की बारिश, जिससे उमस बढ़ रही है और गर्मी अपना असर दिखा रही है। प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार आमजन की समस्याओं और शिकायतों के मौके पर त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में बीते दिनों जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ आमजन की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया तथा जांच और कार्यवाही योग्य आवेदनों में से अतिशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। राजस्व शिकायतों के निराकरण में लंबित स्थिति पर कलेक्टर ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तरमीम और सीमांकन के शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व अधिकारी स्वयं फील्ड पर विजिट करें, निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पृथ्वीपुर निर्वाचन कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के आवेदकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। पृथ्वीपुर तहसील के अंतर्गत आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम मनीषा जैन और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई को वर्चुअली जोड़ा गया था। पिछले दिनों कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ जेरोन तालाब का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब की साफ सफाई, स्वच्छता और जल संरक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलकुंभी और अन्य जलीय खरपतवार को मशीन और श्रमिकों के माध्यम से पूरी तरह से हटवाया जाए। तालाब किनारे जमा कचरा और प्लास्टिक को भी साफ करवाया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निवाड़ी जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासन के आदेश के अनुसार इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस कड़ी में दिनांक 12 जून से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकास खंड और नगरी निकाय मुख्यालयों पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर मौके पर ही लाभान्वित करना है। इसके साथ ही आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और कृषि सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पीएम आवास, लाडली बहना, पेंशन और राशन पर्ची जैसे प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

कलेक्टर ने जिले के सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी विकास खंड या नगरीय निकाय मुख्यालय पर लगने वाले जन कल्याण शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ अवश्य लें। इसके साथ में वे जरूरी दस्तावेज लेकर जरूर आएं ताकि मौके पर ही पात्रता जांच कर लाभ दिया जा सके। जन कल्याण शिविर 12 जून से 18 जून की अवधि में समस्त नगरीय निकायों और जनपद मुख्यालयों में कुछ 5 स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आयुष्मान भारत, व्यय वंदन, पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी और वीबीजी रामजी के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। बीते दिनों एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ग्राम पंचायत कुलवा में आयोजित वृहद पौधरोपण कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन ने परमार्थ समाज सेवी संस्था के सहयोग से ग्राम पंचायत कुलवा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान चंदेली तालाब पर वृहद पौधरोपण भी किया गया। श्री राम राजा सरकार मंदिर ओरछा धाम की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंध बनाने के उद्देश्य से बीते दिनों कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में ओरछा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया और जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मंदिर के उत्कृष्ट प्रबंधन, समन्वय और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिए गए। निवाड़ी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं मेहंदी हसन की गाई गजल से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के।
5: लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोच

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में प्रस्तुत है ये भजन।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन के साथ आज चुने हुए विषय पर आपसे करेंगे बात और सुनवाएंगे गीत हमारी पसंद के। दोस्तों जैसा हमारा चित्त होता है हमें संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। यदि मन में सकारात्मक और सद्भाव हो तो हर ओर अच्छाई नजर आती है। हालात भले डगमगाए लेकिन मन अच्छाई पर डिगा रहता है। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। अगर हम वही देखें और उससे सीखें तो रिश्ते भी बेहतर बनते हैं और मन भी हल्का रहता है। शोध से पता चला है कि दूसरों की सराहना करने से मस्तिष्क नाटक बदल सकता है जिससे लोग स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और खुश रहने लगते हैं। तो चलिए लोगों में अच्छाई देखने के गुण और सकारात्मक रवैया यानी जित देखो तित भला के बारे में आप क्या कहेंगे, जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
1: हमारा आज एक विषय रहता है उस पर हम आपसे बात करते हैं, तो क्या आप अपने उस विषय पर आप हमें अपने विचार बताएंगे?
2: तो विषय बताएं क्या है दीदी?
1: जित देखूं तित भला, जहां हम देखें वहां हमें भला दिखाई दे, अच्छाई दिखाई दे, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
2: यहां हम देखें
1: वहां हमें अच्छा दिखाई दे, क्या ऐसा होता है?
2: हाँ होता है ना।
1: हाँ बताइए इस विषय में आप क्या कहेंगे?
2: गांधी जी के तीन बंदरों की याद है, बुरा मत देख बुरा मत बोल बुरा। वो अच्छे से अच्छे विचार रखें, अच्छा से अच्छी सोच रखें, अच्छा से अच्छा काम करें, अच्छा देखें, सबके प्रति अच्छा सोचें।
1: तो आपको किसमें क्या बात अच्छी लगती है? आपके दोस्त परिवार नाते रिश्तेदार या आप जहाँ कहीं भी, एक कोई अनजान भी यदि आपको मिल जाता है तो उसमें आपको कभी कोई अच्छाई दिखाई दी हो तो एक आध उदाहरण या कोई इंसिडेंट?

0: में बताइए।
1: हम तो सब जितना बनता अच्छा करते, हमारे पिताजी ने एक अच्छा काम किया, देश हित के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़की महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल गए।
0: अच्छा,
1: हाँ, फ्रीडम फाइटर थे हमारे पिताजी, 13 मार्च सजा काटी इनने आजादी में।
0: क्या नाम था आपके पिताजी का? सादर नमस्कार है हमारा आपके पिताजी के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए, क्या कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।

0: हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैम, मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से। जी
0: अरे पिंकी जी, रायबरेली से बहुत दूर से बात कर रहे हैं।
1: जी आज मैं आपके कार्यक्रम से फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ मैम। मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको

0: आकाश वाणी छतरपुर से सुनते हैं।
1: अच्छा, अच्छी तरह से सुनाई
0: आप
1: देता है।
0: कनेक्ट करके सुनाते हैं ना मैम, सुनते हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: आज मैं आपके कार्यक्रम में पहली बार जुड़ी हूँ।
1: अच्छा, आप कार्यक्रम इतने समय से सुन रहे हैं तो आज पहली बार क्यों लगाया आपने फोन, पहले क्यों ट्राई नहीं
0: जी
1: किया?
0: मैम, पहले मुझे नॉलेज नहीं था तो मुझे किसी ने जानकारी दी,
1: हाँ
0: मैंने मतलब कार्यक्रम के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे नंबर भी दिया और बोला कि कॉल ट्राई करना, तो कल से ट्राई कर रही थी, कल भी मिल गई थी तो कल नहीं कॉल रिसीव हुई, आज हो गई
1: आज हो गई। चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि पहली बार
0: जी। और
1: आपका
0: मैम
1: फोन
0: मैं
1: लगाए।
0: आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी क्योंकि आज मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है।
1: जी तो हम बता दें, हम प्रियंका बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी और मैम मुझे ना आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं मैंने ये सब मतलब जो बोलना और ये मतलब सब एक मतलब रेडियो से मैंने सीखा है मैम, आप लोगों को सुन सुन के।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात
0: और
1: है।
0: मैम कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आपने जो ये बात कही ना कि हमने रेडियो से सुन सुन के बोलना सीखा है या बोलने का तरीका सीखा है, तो ये एक अच्छी बात आपने हमसे और रेडियो से सीखी है। तो पिंकी जी, आज हमारा विषय भी ऐसा ही कुछ है, तो बताइए, जित देखूं तित भल, तो इस बारे में
0: बिल्कुल
1: आप
0: मैम।
1: क्या
0: और
1: कहेंगे?
0: मैम रेडियो के माध्यम से ये मोहब्बत ही ऐसी है कि सभी श्रोता इतनी दूर होते हैं फिर भी रेडियो के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो लेकिन यही बात, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जित देखूं तित भला, यानी आकाशवाणी रेडियो जो है वो हर तरफ
0: जी जी
1: अच्छाई और भलाई का काम कर
0: बिल्कुल
1: रहा
0: मैम,
1: है।
0: बिल्कुल मैम।
1: अच्छा पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए, और अब एक सप्ताह बाद आप फिर से ट्राई कीजिएगा, है ना, और
0: ठीक है
1: हमसे बात
0: मैम। मैम
1: कीजिएगा।
0: बिल्कुल मैम, मुझे आपके यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैम आप लोगों से मेरी बात हो, आज हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: जी, तो ऐसी ही
0: और
1: अच्छी
0: मैम
1: लगने
0: मेरे
1: वाली,
0: दोस्त भी आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं मैम, उनका नाम क्या ले सकते हैं आपके
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम
1: दो
0: में?
1: तीन दोस्तों का नाम लीजिए और उन्हें भी ये जानकारी दीजिए, जैसे आपको कहीं से जानकारी मिली है फोन लगाकर बात करने की।
0: और मेरी दोस्त है गुंजन तिवारी, और मेरी सिस्टर है रिंकी, और मेरे भाई है दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही।
1: अच्छा
0: श्रोता शिकायत भी करते रहते कि मेरी कॉल नहीं लगती, कॉल नहीं। मैम जब प्रयास करेंगे तभी तो हमारी कॉल लगेगी, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे बस सोचते रहेंगे कि हमारी कॉल नहीं लगेगी तो मैम कैसे लग जाएगी।
1: बिल्कुल, लेकिन वो श्रोता भी प्रयास करते होंगे तभी तो शिकायत कर रहे हैं ना, बिना प्रयास के
0: नहीं
1: तो कोई
0: मैम, मैं
1: शिकायत
0: बहुत
1: नहीं
0: सारे
1: करेगा।
0: चैनल से सुनती हूँ मैम, देखिए मैम बहुत सारे श्रोता हैं जो एक साथ कॉल लगाते हैं तो कनेक्ट हो पाती किसी की नहीं हो पाती, लेकिन
1: जी
0: कभी शिकायत नहीं करना चाहिए बल्कि अपना हौसला ऐसा रखे कि कभी हिम्मत ना हारे, टूटने भी लगे तो अपने हौसलों को बुलंद करे, एक ना एक दिन आपकी कॉल जरूर लगेगी।
1: अरे वाह पिंकी जी, बातों ही बातों में आपने तो कितनी सारी बातें कह दी जित देखूं तित भला के बारे में।
0: जी बिल्कुल मैम,
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे और भी श्रोता इंतजार कर रहे हैं, आपसे
0: जी
1: काफी
0: जी
1: लंबी बात
0: बिल्कुल
1: हो
0: मैम,
1: गई है।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार जी। मैं
0: कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम और जगह का नाम बताइए।
1: मनीष कुमार बोल रहा हूँ, आगरा।
0: स्वागत है आपका। मनीष जी, आज हमारा कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, यानी हम एक विषय आपको देते हैं एक, और उस पर आप अपनी विचार हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि हम जान सके कि उस विषय पर आप क्या सोचते हैं। जी, हमारा विषय हम बता रहे हैं, बिल्कुल बातचीत अभी शुरू हुई है। हमारा विषय है जित देखू तित भला।
1: जैसे दूसरी तरफ देखो तो एक दूसरे को मतलब को अच्छा लगना चाहिए पहली बात से, और उसकी बुराई मत करो,
0: जी
1: यही है दूसरे का रवैया।
0: जी लेकिन आप दूसरों में कोई अच्छा गुण कैसे देखते हैं? कौन सा गुण ऐसा है जो आपने किसी दूसरे से अपनाया हो, कोई अच्छा गुण?
1: गुड़ की तो उससे जब मालूम पड़ती है, उसके उसके दोनों के तालमेल मिलते हैं, वातावरण से अच्छे गुणों की मालूम पड़ती है।
0: आपने कोई बात अच्छी किसी से सीखी है, हमें बताएंगे आप?
1: अच्छी तो ये मतलब किसी से बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो, बोलाओ
0: ये तो एक विचार है ना,
1: क्या है। तो
0: जो हमारे अपने होते हैं कि भाई किसी का बुरा मत करें, है ना, करें हम। और लेकिन ये होता है ना कि जैसे किसी में कोई गुण होता है कि वो बहुत सलीके से रहता है, कोई सलीके से बोलता है, तो क्या उसकी वो बात वैसी बात आप अपनाते हैं या नहीं?
1: बनाते हैं मानव लाभ होते बात वो मान भी जाते।
2: मुझे अच्छे लगने लगे,

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते
1: हेलो,
0: नमस्ते
1: नमस्ते जी।
0: जी। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। स्वागत है आपका।
1: मैं ग्राम अध्यक्ष गोला कुमार थाना सिवना तहसील महरौली जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना वीडियो तो दीपक कुमार नाम दे बात कर रहा दीदी।
0: अच्छा दी, दीपक जी, अचानक आपकी आवाज थोड़ी कुछ ऐसी आने लगी कि जैसे कहीं नेटवर्क की दिक्कत हो।
1: जी, हमारे यहाँ जियो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है।
0: हाँ, चलिए ठीक है। आपसे बातचीत हमारी हो पा रही है, बहुत अच्छी तरह तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे। आज विषय है बात आपकी, गीत हमारे प्रोग्राम है, यानी लोगों में अच्छी बातें और सकारात्मक रवैया को लेकर आप क्या सोचते हैं।
1: जी देखो, ऐसा है कि हम हैं तो हम भले हैं तो सब अच्छे, जैसे आप लोग अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। कहने लगती है कि आप भले तो जग भला।
0: जी
1: जी, व्यक्ति अगर व्यक्ति स्वयं के लिए सोचे, कि अगर आपके प्रति अगर जो व्यक्ति स्वयं के लिए देखे, कि हम अगर किसी के सामने एक उंगली बताते हैं कि आप में एक कमी है, तो तीन उंगली अपनी ही कमी बताती है। पहले तो आदमी को अपनी कमी देखना चाहिए, किसी दूसरे की कमी बताना चाहिए।
0: जी
1: जी, अपन सारे से किसी को उंगली बता दे, तीन उंगली गलत का इशारा आप को ही देती है। हाँ, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी की भलाई करना चाहिए।
0: भलाई करना चाहिए और भलाई सब में देखना भी चाहिए।
1: जी
0: जी, धन्यवाद दीपक जी, आपका नमस्कार।
1: जी जी दीदी, और हमारी एक आपसे शिकायत है।
0: जी बिल्कुल कीजिए।
1: कुछ श्रोता कहने लगते हैं कि हमारी कॉल नहीं निकल रही है, तो आपसे आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना कॉल रिकॉर्ड किया जाए, जितना आप निकाल सको, एक्स्ट्रा कॉलिंग रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ श्रोताओं की शिकायत रहती है हमारी कॉल शामिल नहीं हुई है, और कार्यक्रम का इंतजार करते रहते हैं, कॉल भी उसकी रिकॉर्ड हो जाती है, फिर भी परेशान नहीं हो पाता है समय के अभाव से।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समय के अभाव के कारण हमारे वो श्रोता रह जाते हैं कई बार, क्योंकि जिनके कॉल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि कई श्रोताओं की फरमाइश ऐसी होती है कि अगर एक गीत उन्होंने 7 मिनट का चुन लिया है तो फिर हमें कॉल ही नहीं लेना, वही एक हमारे पास रास्ता रह जाता है ना।
1: इसीलिए तो आपसे कहा कि कॉल बिल्कुल सीमित लें, जितना आपसे कॉल लें तो बिल्कुल सीमित लें। जान लो हमें 10 कॉल प्रसारण कर पा रहे तो 10 ही कॉल लें, ज्यादा कॉल एक्स्ट्रा ना लें, क्योंकि श्रोताओं को दिक्कत हो सुनने के लिए। श्रोता 1 घंटा का कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और उनका
0: जी,
1: कॉल ना निकले तो उनको बहुत दुख होता है।
0: लेकिन देखिए दीपक जी, ऐसा भी है कि कई बार हम सीमित कॉल ले लेते हैं, लेकिन कई श्रोता के ऐसे रहते हैं कि नेटवर्क की दिक्कत रहती है, कहीं कोई श्रोता अच्छी तरह बात नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, तो फिर हमें उनके कॉल हटा देने पड़ते हैं, इसलिए भी हम एक्स्ट्रा कॉल रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो दोनों ही तरह से सोचा जाए तो आपकी भी बात सही है, और क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं।

0: कि श्रोताओं के फोन कॉल भी लिए जाए, उन्हें अच्छी क्वालिटी मिले सुनने के लिए, हम इस पर भी ध्यान देते हैं, और उनकी जो फरमाइश है वो भी वो पूरी सुन सके, इस पर भी हमें सोचना पड़ता है।
1: और एक सुझाव और है हमारा,
0: बिल्कुल,
1: कि जो आप विषय रखती हैं कार्यक्रम में, तो विषय अगर कार्यक्रम के अंत में एक दिन पहले के कार्यक्रम में बता दिया जाए, जैसे कल का विषय है जो आज के कार्यक्रम में बता दिया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी, आपका ये सुझाव बहुत ही सराहनीय है, हम इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे आपके।
1: इसलिए कि हम लोग जो आप विषय रखती हैं, तो तुरंत की तुरंत जल्दी सोचने समझने में,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि हर व्यक्ति तुरंत बोल पाने में सक्षम नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है, तो एक दिन पहले वो उस विषय पर सोच ले और अगले दिन फिर बात कर सकता है। ये
1: क्योंकि हम लोगों का कॉल लग जाता है तो बहुत खुशी हो जाती है, तो फिर विषय में दिक्कत आ जाती है बोलने में।
0: बिल्कुल, ये बात आप हम मानते हैं और हम ऊपर के अधिकारियों तक आपकी ये बात अवश्य पहुंचाएंगे, तो हो सकता है आने वाले जो भी फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स होंगे या प्रोग्राम रिकॉर्ड होंगे तो आप उसमें सुनिएगा, अगले दिन का विषय सुन सकते हैं, यदि हमें इजाजत मिली, अनुमति मिली, तो अवश्य इस बात को हम प्रसारित करेंगे।
1: जी, हमारी बात किस तरह, आपका शुभ नाम?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: जी दीदी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपके सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: जी जी जी, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने शिकायत भी बहुत अच्छी की, तो उम्मीद करते हैं उसका समाधान भी आपको मिला होगा, और आपने जो सुझाव दिया वो भी हमें अच्छा लगा, तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपके उस सुझाव पर विचार करें और उस पर अमल करें।
1: जी दीदी
0: जी, धन्यवाद दीपक जी।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका, लेकिन हम आपका नाम जानना चाहेंगे तभी तो स्वागत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: प्रदीप कुमार है जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं प्रदीप जी?
1: नई कॉलेज बसीनाबाद जिला धौलपुरा स्थान से।
0: ये कहाँ पर है दलबरा?
1: ये बसीनाबाद धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बढ़िया। तो क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा, तो आप कार्यक्रम सुनते हैं? आप
1: बिल्कुल मोबाइल पर सुनते हैं।
0: मोबाइल पे सुनते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे, हम एक विषय दे रहे हैं, आप क्या उस पर बोल सकते हैं?
1: बिल्कुल बोला है। मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ। 91 से मैं जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी से।
0: जी। आज हमारा विषय है जित देखू तित भला, यानी हम जो भी जिन भी लोगों से मिलते हैं उनमें हमें अच्छा दिखाई देता है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: अच्छा, भलाई मतलब जैसे किसी की तो एक तो बुराई नहीं होनी चाहिए।
0: जी, लेकिन बुराई तो होती ही है ना, हर सभी में होती है बुराई, तो सभी में होती है और अच्छाई भी होती है, लेकिन हमें
1: अच्छा ही
0: देख
1: होना चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा ही होना चाहिए।
0: अच्छा ही होनी चाहिए। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा अच्छाई देखने का नजरिया रखते हैं, कैसे रखते हैं, और क्या उनकी कौन सी बात आपने किसी दूसरे से अपने जीवन में अमल में लाई हो?
1: भलाई ना आवे उसमें तो उसकी दूसरे की मतलब बुराई भी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो एक ये है हमारी।
0: बराबर, ये एक अच्छाई वाली बात आपने कही कि लोगों से ये अच्छाई लेनी चाहिए कि हम किसी की बुराई ना करें।
1: दूसरे बुजुर्गों की उनकी कोई अच्छी बात बताए तो उसके दिमाग में रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे मतलब कोई राम आड़े है वैसी है उसकी बातें बताते हैं तो उसकी भी बतानी चाहिए। दूसरा पूछता है तो मतलब क्या सीख क्या उसमें से तुम।
0: बिल्कुल, जैसे कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जब स्कूल से बच्चे घर आते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि आज क्या सीखा है स्कूल में। अच्छी ही बात सीख कर आते हैं बच्चे, पढ़ाई से संबंधित बात सीख कर आते हैं। तो ऐसे ही हम आम जनजीवन में जो है इस तरह की बात को हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ सीखें अच्छा सीखें।
1: अच्छा सीखे, सही बात
0: जी
1: है जी। सबसे ज्यादा तो कम ही यही है।
0: बिल्कुल। तो प्रदीप कुमार जी, धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से। हाँ,
1: गोंडा।
0: यूपी।
1: अच्छा जी, क्या नाम बताया, एक बार फिर से बताइए।
0: अनु पांडे
1: अनु जी।
0: जी मैम, आज मेरी फर्स्ट बार कॉल लगी है और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार फोन किया उन्होंने और उनका फोन लगा।
0: हाँ, अब मुझे आपसे जोड़ा है पूनम जी ने, जो कानपुर की है, और मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी।
1: जी
0: आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, मेरी तन्हाइयों का सहारा दिया है, मेरी किस्मत भी मुझ पे नाज करती होगी, क्योंकि ऊपर वाले ने दोस्त भी मुझको इतना प्यारा दिया है आप जैसा।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जब हमारे दोस्त इतने अच्छे हैं तो हम तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि आपसे ही तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। जो हमारा आज का विषय है कि जित देखू तित भला, हम दूसरे में कोई अच्छी बात देखते हैं, सीखते हैं, उनसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इस
0: मैम
1: बारे में आप
0: आपकी
1: क्या
0: ना,
1: कहेंगे? अच्छा जी, तो ये जो आपने बात कही कि हम जैसे प्यारे दोस्त आपके जीवन में है, तो आप जैसे प्यारे श्रोता है, तभी तो हम भी इतने अच्छे हैं। आपसे बात करके ही हम सीखते हैं अच्छी बातें।
0: मैं ना, हम लोग आपसे सीखते हैं, आप लोग कुछ बहुत थोड़ा बहुत मुझसे सीखते होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है हम लोग ज्यादा आप ही से सीखते हैं।
1: अच्छा, और हमें लगता है कि हमारे पास श्रोताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोताओं से सीखते हैं।
0: जी मैम,
1: जी, तब ये बताइए कि आप अपने आसपास के वातावरण में और अपने आसपास मिलने जुलने वाले लोगों से क्या अच्छी बात सीखते हैं?
0: मेरे आसपास सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात है कि अपनापन बहुत है, और मेरे आसपास कोई भी बात करता है तो तेरा मेरा करके बात नहीं करेगा, अपना करके बात करेगा, कि जैसे लगेगा सब अपना ही है, और एक दूसरे का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझको।
1: बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज आप दूसरों से सीखते हैं।
0: हाँ
1: जी, बहुत अच्छी बात है अनु जी, और हमें इसी तरह आप फोन करते रहिए, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहिए, हमारे श्रोताओं को भी अवगत कराइए, और हमारे श्रोताओं की और भी संख्या आपके माध्यम से बढ़े, ये हम उम्मीद करते हैं।
0: जी मैम, हम संख्या भी बढ़ाएंगे, जब मुझको सफलता मिल गई है, आज मेरी कॉल लग गई, बात हो रही है, तो हम और लोगों को भी जोड़ेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि अपनी खुशी तो हम सभी को बताते हैं ना। आज आप कितने दोस्तों से कहेंगे कि आज हमारा फोन कॉल लगा, है ना?
0: हाँ, बहुत
1: जी
0: सारे लोगों से बताऊंगी ना, आज मेरी पहली बार कॉल लगी। वैसे तो मैं आकाशवाणी पे, FM पे बहुत सारी जगह कॉल लगाती हूँ, पर आपकी आज मेरी पहली कॉल है, मेरी पहली बार लगी है।
1: जी, तो अनु जी बस इसी तरह हमें फोन करते रहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आज आपका फोन कॉल लगा है तो आप अगला कॉल अब एक हफ्ते के बाद लगाइए, ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी अवसर
0: जी
1: मिले।
0: मैम, जी
1: जी,
0: मैम,
1: नमस्ते।
0: मैं इस चीज का हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं कहीं भी कॉल लगाती हूँ तो हफ्ते 10 दिन का गैप कर ही देती हूँ, वहाँ रूल है, हफ्ते 10 दिन के गैप का तो भी नहीं है तो भी, क्योंकि इससे ये अच्छा लगता है कि अलग अलग, मतलब और भी ज्यादा लिसनर को जुड़ने का मौका मिलता है, और नए नए लोग आते हैं तो नई नई बातें जानने का मौका मिलता है, उनके आसपास के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है। और
1: बिल्कुल
0: जब हर बार हम ही कॉल करेंगे, हम ही बात करेंगे, तो फिर नई नई बातें कहाँ से जानेंगे और हमारे दोस्तों की संख्या कहाँ से बढ़ेगी।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अनु जी आपने, मतलब ये तो बिल्कुल सटीक बात है। आज हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है, बात आपकी गीत हमारे
0: हाँ
1: का, उससे संबंधित आपने बहुत अच्छी बात कही है ये हमारे लिए और हमारे
0: अरे
1: और
0: बहुत
1: श्रोताओं के लिए भी।
0: जी मैम,
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क को माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30%

जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 लापता हैं। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-6112 का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव दर्ज कर सकेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना है समीर की और गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

शुरू में गीत पसंद करना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने इसी गीत को सुनना चाहा था, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली फरमाइश जिसे हमने लिया है फिल्म सड़क से। स्वर हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू के, ये शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है समीर और सुरेंद्र साथियों का। तो इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसी गीत को सुनना चाहा है बिहार कॉलोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाश वीर राजपूत, डोडी लाहौरा बलोद से कमलेश जयपुरिया ने, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप ने।

फरमाइश, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। स्वर है साधना सरगम की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, सादिक भाई और शाहिद भाई। इसी गीत को सुनना चाहे मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद सिंह और महावीर संधु, गुरचरण और रमेश मिगलानी ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म रहना है तेरे दिल में, सोनू निगम और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहे यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने।

0: इस गीत को पसंद किया था आप सभी ने। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने। इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी

0: केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग,
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर,
1: 8700001-4242।
2: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
3: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार का 6वां भाग।
4: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, शिबू यशवंत के साथ घर लौटता है। यशवंत नारायणी को शिबू के टीबी होने की बात बताता है तो वो दुखी होती है। गेहूं के खेत में मजदूरों की सभा को शास्त्री जी संबोधित करते हैं और हड़ताल का आह्वान करते हैं। गांव के किसान भी मजदूरों का साथ देते हैं। कंपनी की शह पर सभा को सफल होने नहीं दिया जाता। यशवंत बलबीर स्वामी के साथ शास्त्री जी से मिलने जाता है। अगले दिन दलित मजदूरों की सभा करने का फैसला होता है। यशवंत नारायणी को हड़ताल का विरोध न करने के लिए समझाता है। बसुमती का लड़का नौकरी से निकाले जाने के बाद साई नदी के पास बनी दलित बस्ती में अपनी अम्मा से मिलने अपनी लड़की पार्वती के साथ आता है। भृगु यहीं पर रहकर मजदूरी करना चाहता है। अपनी अम्मा के मुंह से हड़ताल की बात सुनकर वो चौंकता है। अब

0: मजदूर साथियों, हम लोग शांति से हड़ताल करेंगे, क्या आप लोग तैयार हैं?
1: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद।
0: हमारा सच्चा उद्देश्य तभी सफल होगा जब सबके पास आत्मत्याग की भावना होगी। हड़ताल की सफलता में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। साई की ये बहती धारा मेरी बात की मूक गवाह है। आप सभी को यूनियन का तन मन धन से साथ देना होगा। बोलो, दोगे? हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय, जिला मजिस्ट्रेट तथा चीफ इंजीनियरों को भेजने के लिए नोटिस तैयार किया है। क्या ये आप सब लोग सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, रायबरेली जिले के मजदूर सन 1976 के अप्रैल महीने से काम की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अनेक प्रतिनिधियों ने अब तक केंद्र और राज्य के मंत्रियों से बात की है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार भी बदल गई है। नई सरकार से मजदूरों को आशा की नई किरण दिखाई दी है। नई सरकार बनने के बाद हमने 6 महीने इंतजार किया, पूरे 6 महीने। केंद्र के श्रम मंत्री, राज्य मंत्री, आयुक्त, सहकारी केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडलों के सचिव से मिलकर हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बहुत बार बात की। सबके जूते घिस गए। कंपनी के अधिकारियों ने सरप्लस मजदूरों की सूची तैयार की, जिससे दिहाड़ी मजदूरों के सिर पर बिजली गिरी। मौखिक रूप से स्थानीय यूनियन के स्थानीय संचालक का जो भी समझौता हुआ वो टूट गया। संचालक ने विश्वासघात किया। अब कोई उपाय नहीं बचा है, इसलिए मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। यह हड़ताल 20 तारीख से शुरू होगी।

0: और उचित व्यवस्था होने तक चलती रहेगी। मेरे साथ बोलिए, मजदूर यूनियन
1: जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे
0: जीतेंगे,
1: लड़ेंगे
0: जीतेंगे। कल हम एक हफ्ते का नोटिस देंगे, उसके बाद हम सब लोग इस धर्म युद्ध में कूद पड़ेंगे। मजदूर एकता
1: जिंदाबाद जिंदाबाद।
2: हर जोर जुल्म की टक्कर में
3: संघर्ष हमारा नारा है।
2: हर जोर जुल्म की टक्कर में
3: संघर्ष हमारा नारा है।
4: अध्यक्ष महोदय, हमें हड़ताल से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी एक शंका का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
0: शंका? कैसी शंका? साफ साफ कहो।
4: हड़ताल के नतीजे के बारे में हमें अभी कोई स्पष्ट गारंटी नहीं मिली है।
0: क्या गारंटी चाहते हो?
4: महोदय, हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। हम लोगों को पेट पर गांठ बांधनी पड़ेगी। हमारे बच्चे भूखे भी मर सकते हैं। बोलो, क्या गारंटी दोगे?
5: हाँ, बोलो बोलो,
4: गारंटी दोगे?
5: बोलो।
0: किसने कहा कि हम लोग गारंटी नहीं दे सकते? हम गारंटी देंगे और जरूर देंगे। हर तरफ से पैसों का बहाव आएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। साई की धारा महानदी बनेगी।
4: ठीक है महोदय, हम लोग तुम्हारे आश्वासन पर हड़ताल शुरू करेंगे, लेकिन हड़ताल का नतीजा कुछ बुरा हुआ
0: तो क्या होगा तब?
4: तो हम लोग तुम्हें और दूसरे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
5: हाँ,

कितनी अभागी है नारायणी, जिस उम्र में उसे सुख भोगना चाहिए उस उम्र में बेचारी दिन रात मजदूरी में खटती रहती है। पति टीबी का मरीज है, उसकी सेवा अलग करनी पड़ती है। एक नन्ना बच्चा जिसके मुंह से अभी मां का दूध भी नहीं छूटा है, उसकी परवरिश किस तरह कर पाती होगी बेचारी। शायद उसकी किस्मत ही फूटी थी जो बीमार पति उसके पल्ले पड़ा। किसी दूसरे घर जाती तो उसका पति अपनी अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। लेकिन मैं क्यों सोच रहा हूं ये सब? नहीं, मुझे पर स्त्री के विषय में सोचने का भला क्या अधिकार? कहीं मैं उसकी ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे अपने आप को भटकने से रोकना होगा। इंसानियत के नाते भले ही मैं उसकी मदद कर दूं, बस इससे अधिक उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है।

0: अरे यशवंत,
1: अरे यशवंत, हम तुझे कहाँ कहाँ खोजते फिर रहे हैं।
2: काकी, तुम मुझसे कोई काम है?
1: हाँ। अच्छा ये बता, हड़ताल होने का फैसला हो गया है क्या?
2: हाँ काकी, अब तो नोटिस भी दिया जा चुका है, हड़ताल तो होकर ही रहेगी।
1: अरे तुझसे हमको ऐसी आशा नहीं थी। अरे तू भी नेताओं के चक्कर में पड़ गया लगता है।
2: काकी, ये हड़ताल हमारे हक की रक्षा के लिए हो रही
1: है। कैसा हक है, कैसा हक यशवंत? अरे हड़ताल हुई तो चारों ओर भूख नाचेगी, भूख, खून खराबा, लाश, चील, गिद्ध, हिंसा ही हिंसा। हे गांधी भगवान, इस नादान को क्षमा कर, क्षमा कर इसे।
2: चली गई काकी भी ना, बस
3: हाँ शिबू, तबीयत कैसी है भाई?
4: अरे लेचू भैया, अब तो काफी आराम है। वैसे लेचू भैया, इस कंपनी में और दलित मजदूरों की बस्ती में हम दोनों एक जैसे ही हैं।
3: है? मतलब?
4: मतलब के दोनों अपंग। मैं टीबी का मरीज, ये हड्डियां निकला शरीर।
3: हो भाई शिबू, मैं भी अपंग, मेरा एक पैर खराब है, लेकिन हम दोनों पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ। तुम भी भले चंगे थे, हाथ पैरों में जान थी, खूब मेहनत करते थे तुम।
4: अरे जो मेरा हाल है सो तुम्हारा, तुमको जन्म से तो अपंग नहीं थे ना?
3: हाँ हाँ।
4: कंपनी के काम करते हुए ही तुम्हारी ये टांग कटी।
3: हाँ भैया। सुना है शिबू, सरकार अपने कर्मचारियों को इलाज का रुपया देती है और हमें कंपनी गालियां देती है। अरे इलाज तो दूर, नौकरी से निकाल देती
4: है। अरे लीचू भैया, ये देश हमारा है और हम सब इस देश के रहने वाले हैं, आजाद हैं। अरे वो भी काम करते हैं और हम भी भरपूर मेहनत करते हैं, पर लीचू भैया फिर अलग अलग कानून क्यों है? ये कौन सा न्याय है भैया?
3: अरे शिबू, पढ़े लिखे बताते हैं कि कानून की नजर में तो सभी बराबर हैं, लेकिन अफसर की टेढ़ी नजर है। बराबरी कागजों में बंद है और उसी के साथ बंद है हमारी किस्मत। ये लीडर लोग हम गरीबों को बहका फुसला कर हड़ताल कराते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, और कुछ नहीं बस।
4: हाँ भैया, देखो तो भला, दुहाई देते हैं गरीबों की, बात करेंगे गरीबों की, उनकी भलाई की, और भलाई की मलाई चट कर जाएंगे ये लीडर लोग खुद।
3: अरे शिबू, शिबू, शिबू, आज तक किसी लीडर को पिटते देखा है? किसी लीडर को मार खाते देखा है? किसी लीडर को गरीब देखा है? किसी लीडर को मेहनत करते देखा है? किसी लीडर के बच्चे भूखे सोते हुए देखे हैं तू नहीं?
4: अरे नहीं नहीं नहीं लीचू भैया, काम धाम कोई नहीं, बस ऐश आराम भरपूर, यही तो है लीडर का मतलब।
3: भैया, अपनी अपनी किस्मत है और क्या।
4: क्या करें लीचू भैया, क्या करें, हम लोग तो सिर्फ बातें करके रह जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते कुछ, नहीं तो हालात बदल सकते हैं।
3: अरे भैया, जब मैं साहब लोगों के घरों में सफाई का काम करता था ना, तो कान उनकी बातें सुनने में लगे रहते थे। शिवू भैया, मैंने अपने इन्हीं कानों से सुनी है दूसरे देशों की बातें।
4: अच्छा हाँ। लीचू भैया, कुछ कुछ हमें भी तो बताओ। देखो लीचू भैया, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कुछ ही तुम बता दोगे।
3: शिवू शिवू, बड़े लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, गरीब इसलिए गरीब रह जाता है कि वो पढ़ता लिखता नहीं है।
4: हाँ लीचू भैया, ये बात तो सच है, अब हाथ कंगन को हारती क्या, वो अपने यशवंत भैया को ही देख लो ना, पढ़ लिख गया तो यूनियन कमेटी में बैठ गया।
3: अरे सुनो सुनो शिबू, मैंने सुना है कि दूर देशों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा बिल्कुल नहीं है। हाँ? और सभी को खाने के लायक तो मिल ही जाता है।
4: अच्छा, ले चलो भैया, हम इसे भाग्य कहें, कर्म गति कहें, अनपढ़ता कहें, क्या कहें।
3: अरे नहीं शिबू,
4: देखो ले चलो भैया, हम तो हालात से समझौता करके संतोष कर लेते हैं
3: बस,
4: लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते ना।
3: इसी बात का तो होना है।
4: देखो लच्छू भैया, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा उसे, लेकिन अभी तो हालात पेट भरने लायक भी नहीं है, कैसे पढ़ाऊंगा उसे। लगता नहीं मैं अपनी उम्र में बेटे को पढ़ता लिखता देख पाऊंगा।
3: अरे शिबू शिबू शिबू, घबराओ नहीं भैया, और सुनो और सुनो, साहिब लोग कहते हैं कि दूर देशों में गरीब भूखे नंगे क्रांति कर देते हैं, और हमारे देश में भूखे नंगों के कारण क्रांति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं।
4: ले चो भैया, बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। अरे अपनी समझ के ऊपर है।
3: हाँ ऊपर ही है।
4: देखो भैया, हम तो विवश हैं, हमारे भाग्य में लिखा है कि हम अपनी आंखों के सामने अपनी बहू बेटी की इज्जत लूट के देखते रहे।
3: चुप कर शिवा, चुप कर।
4: कानून साहब बहादुर की तरफदारी करता रहे, गरीब की कौन सुनता है, कौन सुनता है।
3: बस कर शिवा, बस कर, तू आराम कर, मैं चलता हूँ, टाइम पास करने के लिए इधर उधर भटकूंगा बस, और कुछ भी नहीं। भगवान ने ये टाइम की कैसी विचित्र वाला बनाई है। तू तो आराम कर, बहुत थक गया है।
4: थक तो गया हूँ, लेकिन लच्छू भैया आते रहना। हाँ? अरे सुख दुख में तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे।
3: अरे ऐसा क्यों कहता है शिव शिव, आराम से, हमें एक दूसरे का ही तो सहारा है।
4: हाँ,
3: तू आराम कर। हाँ।
0: कहाँ जा रही हो नारायणी?
5: अरे आप यशवंत बाबू। कहाँ जाऊंगी मैं, पर आप कहाँ जा रहे हैं?
0: सच बताऊं नारायणी, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, माँ विंध्या वासिनी से तुम्हारे पति के ठीक होने की प्रार्थना करके।
5: यशवंत बाबू, मेरे लिए आप कितनी चिंता करते हैं ना।
0: मुझे अच्छा लगता है नारायणी।
5: यशवंत बाबू,
0: हाँ?
5: सुना है कंपनी वाले रंगपुर से नए लोगों को लाए हैं मिट्टी काटने वाले काम के लिए।
0: हाँ सुना तो मैंने भी है नारायणी, शायद नहीं भी, लेकिन ये बात सच ही समझो तुम।
5: मतलब कि कंपनी वाले ये बताना चाहते हैं कि हम पर हड़ताल का कोई असर नहीं होगा, हम हड़ताल वालों की परवाह नहीं करते। यशवंत बाबू,
0: हाँ?
5: मेरा तो कलेजा धक धक करता रहता है, पता नहीं क्या होगा।
0: देख नारायणी, हड़ताल वाली बात हमारे किसी के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले लीडर अपनी हेखड़ी चलाने के लिए गरीब मजदूरों को बलि का बकरा बनाते रहते हैं। अरे ये तो उनका खेल है, कोई मरे कोई जिए इन पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारी तकलीफों के नाम पर इनकी दुकानें चलती रहती हैं। अरे ये भी व्यापारी हैं, बड़े सौदागर।
5: ये बात आप कह रहे हैं यशवंत बाबू, आप भी तो।
0: वो क्या है ना नारायणी कि अब मैं भीतर की बातें भी जानने लगा हूं, इसलिए कह रहा हूं। अरे हम गरीबों की किस्मत तो गाय बैलों की तरह है, जो मालिक बनता है अपने किस्म से हांकता रहता है। अरे ये
5: आपका रुमाल गिर गया।
0: हाँ।
5: मैं उठाई देती हूँ।
0: हाँ।
5: ये लो।
0: अरे नारायणी, तुझे तो बुखार है,
5: वो
0: तेरा बदन तो गर्म हो रहा है, चल घर चल। आराम कर, मैं दवाई लेकर आता हूँ।
5: बाबू इतना बुखार तो रोज ही चढ़ा रहता है।
0: फिर भी तू काम पर जाती है?
5: काम पर नहीं जाऊंगी तो पेट कैसे भरेगा? मेरा काम ही मेरा आराम है। बाबू ये इस तरह मेरी तरफ टकटकी लगाए क्या देख रहे हो?
0: कुछ भी नहीं नारायणी।
5: तो मेरा मेरा हाथ तो छोड़िए ना। कब से मेरा हाथ पकड़े हुए हैं आप? डॉक्टर भी तो ऐसे ही नब्स पकड़ कर रोग पहचानता है। आप डॉक्टर लगते हैं
0: क्या? हाँ नहीं पता नहीं कैसे नारायणी मैं बहुत देर से तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। अब लो छोड़ दिया। अच्छा अब चलता हूँ।
5: अच्छा हुआ बाबू कि अभी किसी ने देखा नहीं।
0: हाँ।
5: नहीं तो पूरी लाइन में ही क्या पूरी कंपनी में हल्ला हो जाता।
0: हाँ हाँ वो ठीक है। अच्छा एक बात बता नारायणी।
5: क्या?
0: तेरे पति कैसे हैं?
5: ठीक है ठीक है। आप घर आएंगे उन्हें देखने?
0: हाँ हाँ आऊंगा जरूर आऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना नारायणी।
5: हाँ बाबू आप भी अपना ध्यान रखना।
3: अरे शिवू हमारे भूमिहीन लोग जिंदगी भर हार तोड़ मेहनत करते थे लेकिन कभी भर पेट खाना नसीब नहीं हुआ। चारे अच्छे दिन आने की आस में टकटकी लगाए इस दुनिया से विदा हो गए मगर उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। शिवू कभी पूरा नहीं हुआ।
4: अरे लिचू भैया वैसा ही सपना ये यूनियन वाले भी हमें दिखा रहे हैं पर सपना तो सपना ही होता है ना। पर गरीबों के सपने भी कभी पूरे हुए हैं?
3: अरे शिवू गरीब सपनों में जीता जरूर है लेकिन सपनों को हकीकत में बदलता हुआ देख नहीं पाता। शिवू आराम से। अरे शिवू हमारे समाज की कितनी ही पीढ़ियां इन्हीं सपनों में काल कवलित हो गई हैं।
4: अरे लिचू भैया यहां से अच्छे दिन तो हमारे चारे खेरा वाले दिन थे। तब नारायणी ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने जाया करती थी। खाने पीने की कोई कमी थी नहीं।
3: अरे हाँ शिवू सुना है ठाकुर साहब मांगने जाने पर मना नहीं करते थे।
4: हाँ ठीक ही सुना है तूने।
3: अच्छा
4: पर मुझे ठाकुर साहब की एक बात अभी भी याद है।
3: कौन सी बात? हाँ
4: अरे वो चारे खेरा के कंपनी के स्कूल में हमारे दलित लड़कों को बोरी बिछाकर बैठने दिया जाता था।
3: अच्छा
4: हाँ वो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर साहब स्कूल पहुंचे और सब बच्चों की बोरियों को इधर उधर कर दिया।
3: अच्छा
4: हाँ हाँ और तब से दलित बच्चे भी साहब लोगों के बच्चों के साथ बैठने लगे।
3: नहीं शिव मैं नहीं मानता ऐसा हुआ।
4: लिचू तुझे तो ना मानने की बीमारी है।
3: अरे नहीं शिवू नहीं दलित बच्चे तो अभी भी साहब लोगों के बच्चों के साथ बैठने लायक नहीं हुए। अरे तू बीमार आदमी कंपनी का स्कूल कभी देखा है तूने?
4: देख लीजिए देख तू मुझे ताव ना दिला।
3: अच्छा
4: अरे मैंने कंपनी का स्कूल नहीं देखा तो क्या हुआ? अरे ये बता तुमने देखा है क्या?
3: हाँ हाँ देखा है। अरे जब मैं अपंग नहीं हुआ था और मेरा पैर ठीक था तब मैं कंपनी के स्कूल में पखाना साफ करने का काम करता था। अपंग होने से पहले मुझे स्कूल और दफ्तर में ड्यूटी मिलती थी इसीलिए कह रहा हूँ तुझे।
4: मैं जानता हूँ कि तू सच कह रहा है।
3: हाँ।
4: भाई मैं तो साहब लोगों के बच्चों के साथ दलित बच्चों के समान होने का सपना बुन रहा था।
3: अच्छा
4: मगर लिचू भैया तेरी सच्चाई ने मेरे सपने को तार तार कर दिया।
3: अरे शिवु, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा जगन्नाथ पढ़े लिखे। अगर वो पढ़े तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी यशवंत जैसा बन जाएगा। अरे कंपनी में मुंशी गिरी करेगा।
4: अरे भैया लिचू, तेरी तो वही कहानी है, घर में नहीं दाने
6: क्या है
4: और अम्मा चली भुनाने हैं।
6: ठीक है भैया, छोड़ इस बात को छोड़। सुन शिवू, सुना है बटेली के पास ही मुरादाबाद के सफाई कर्मचारी और दुसाध जाति के लोग मंदिर के आंगन में लंगर खाने बैठने लगे हैं।
4: हो, वो पासी और सफाई कर्मचारी। अरे जानता नहीं तू
6: क्या,
4: सफाई कर्मचारियों के जायसवार, लाठीकर, कुरार, गावाइलिया और फारीकरों के बीच कैसी सरफुटेबल मारपीट हुआ करती थी।
6: अरे उनकी बात छोड़, हमारे माधिया दरदावा और चिदरूरिया के बीच भी कैसी मारपीट होती थी तुझे नहीं मालूम?
4: मुझे पता। अरे लिचू, लेकिन अब वो पहले जैसे दिन नहीं रहे। अरे काफी बदलाव आ गया है, है ना?
6: अरे मेरे साहब के ब्राह्मण मुंशी के घरेलू जमादार लक्ष्मण सिंह की कहानी जरा पुरानी है। सुन ब्राह्मण मुंशी साफ सफाई पसंद आदमी थे। सफर करते समय कभी कभी सफाई करने के लिए लक्ष्मण सिंह को भी साथ लेकर जाते थे।
4: हाँ लिचू, अरे वो दिन ही कुछ और तरह के थे।
6: ठीक कहा तूने। अरे और जानता है शिवू, लक्ष्मण सिंह बग्घी के कोचवान के पास बैठकर जाता था। एक दिन लक्ष्मण सिंह का कायस्थ के घर निमंत्रण था।
4: अरे लिच्छू भैया, क्या कहता है तू?
6: हाँ?
4: कायस्थ के घर में लक्ष्मण सिंह का निमंत्रण?
6: अरे हाँ शिवू, हाँ मुंशी के साथ उसे भी बुलाया था।
4: अच्छा?
6: हाँ। अरे और मुंशी के साथ वो साफ सुथरी पगड़ी पहनकर निमंत्रण खाने पहुंचा।
4: अच्छा?
6: किसी मोची से वो चमड़े के जूते भी उधार मांग लाया था।
4: अरे
6: हाँ,
4: चमड़े वाला जूता भी।
6: आप सुन तो, वहाँ एक मजेदार वाकया हुआ। मुंशी के पास लकड़ी की मेज कुर्सी पर कायस्थ परिवार ने उसे बैठाया। अचानक मुंशी और लक्ष्मण सिंह चौंक उठे।
4: है? वो भला क्यों?
6: अरे मुंशी को पीतल की थाली कटोरी में खाना परोसा गया था और लक्ष्मण सिंह को चांदी की थाली कटोरी में। शिवू, चांदी की थाली कटोरी में।
4: अच्छा? पर ये कायस्थ परिवार ने क्या गजब किया?
6: अरे सुन तो सही, चांदी की थाली कटोरी देखकर बेचारा लक्ष्मण सिंह एकदम डर गया। कायस्थ परिवार और मुंशी ने कहा, ए भाई खाओ खाओ, तो उसने डरते डरते खाया।
4: अच्छा?
6: और वापसी में मुंशी ने कहा कि आज तूने पहली बार चांदी की थाली कटोरी में खाना खाया है, क्यों?
4: अच्छा, तो फिर लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा?
6: अरे लक्ष्मण सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु महाराज, ये तो आपकी कृपा है। तब मुंशी ने हंसते हुए कहा कि ये तेरा सम्मान नहीं है बल्कि अपमान है ये।
4: है? हाँ भला इसमें लक्ष्मण सिंह का क्या अपमान हुआ?
6: अरे वही तो बता रहा हूँ शिवू, यही बात लक्ष्मण सिंह ने भी पूछी। इस पर मुंशी ने कहा कि दलित के स्पर्श से चांदी पवित्र मानी जाने लगती है, तेरे छू लेने से कायस्थ परिवार के चांदी के बर्तन एकदम शुद्ध हो गए हैं।
4: अरे लिचू भैया, आजकल के कायस्थ लोगों ने हम दुसाध लोगों को कौरव महाराज दुर्योधन के भाई दुशासन का वंशज मानना छोड़ दिया है।
6: अरे शिवु, आजकल राहु की पूजा करने की सामर्थ हमारे पास कहाँ है? पहले के दिनों में हमारे कन्नौजी, मागधी और सिलहटिया लोगों की राहु पूजा में ब्राह्मण भी आते थे।
4: अरे लिचू भैया, मेरा तो मानना ये है कि
6: क्या मानना है शिवु, तेरी खांसी तो बहुत ही जा रही है। शिवु शिवु शिवु, तेरी तबीयत ठीक है? तू लेट जा, थक गया, थक गया, ले जा, आराम आराम आराम। शिवु शिवु शिवु शिवु शिवु, ले जा भैया, आराम कर,
4: हम तो

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने के साथ ही टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर कहा है कि इस दौरान विकास, सुशासन, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों के सशक्तिकरण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु एनसीटी पाठ्यक्रमों बीएड, एमपीड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के लिए महाविद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। प्रथम चरण में 35,918 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को और अधिक सशक्त

0: जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने का अनुमान है और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में 48 टीमों द्वारा 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

पहला सभा सुनने वाली हमारी सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन उनके अपने महिला सभा कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी सखी रुबीना। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, प्रकृति विविध रंगों से भरी हुई है। इनमें सबसे खास रंग होता है हरा, जो हरियाली का संदेश देता है, जिसे देख हम भी नई ऊर्जा, नई उमंग से भर जाते हैं। तपती गर्मी में आंखों की ठंडक है ये हरा रंग, जो न सिर्फ हमें सुकून देता है बल्कि जीवन में आशा का संचार करता है। सखियों, हरा रंग हमें प्रकृति से जोड़ता है। जी हाँ, हमारी वही हरी भरी प्रकृति जिसमें हवा, धूप, पानी जैसे संसाधन मौजूद हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, और इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे हरित ऊर्जा कहा जाता है। सखियों, इन दिनों आप रेडियो पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुन ही रहे होंगे, जिसके तहत सरकार हमें भारी सब्सिडी भी दे रही है। बस यही तो है हरित ऊर्जा, जिसमें सूर्य की किरणों को सोलर पैनल के माध्यम से बिजली में बदला जाता है। यह सौर ऊर्जा कहलाती है। हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे तेज हवाओं के प्राकृतिक वेग से पवन चक्कियों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। नदियों, बांधों में बहते हुए पानी के दबाव से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। इसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। इतना ही नहीं सखियों, कृषि अपशिष्ट गोबर, जिसे हम जैविक कचरा कहते हैं, इससे बायोमास ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक गर्मी मौजूद है। इस गर्मी और भाप का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये सब हरित ऊर्जा के ही प्रकार हैं। सखियों, पारंपरिक ऊर्जा जिसमें कोयले और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, उससे अनेक जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी बढ़ाती हैं। जबकि हरित ऊर्जा इन सभी समस्याओं के खतरे को कम करती हैं। इसके प्रयोग से हम प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण तो पाते ही हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश हमारा भारत देश ही है, जो हरित ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर रहा है। और यह इसीलिए संभव हो सका है क्योंकि हमारा भारत देश प्राकृतिक संपदाओं से भरा है। ये तो बात हुई हरित ऊर्जा की, लेकिन प्रकृति के नजदीक रहना, उसे निहारना भला कौन नहीं चाहता। आइए इस गीत के माध्यम से हम भी आपको प्रकृति के करीब लिए चलते हैं और सुनवाते हैं मुकेश का गाया यह गीत। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गए मोती।

0: सखियों, हमारे आज के बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, और ये बच्चे जितना स्वस्थ होंगे हमारे देश की नींव उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए ज़रूरी है उनके पोषण, उनके टीकाकरण पर उचित ध्यान दिया जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुनते हैं यह भेंटवार्ता, जिसका विषय है बच्चों में टीकाकरण कब और क्यों। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, और इनसे बातचीत की है कामना श्रीवास्तव ने।
1: श्रोता बहनों, माँ बनना सृष्टि की सबसे बड़ी नियामत है, लेकिन 9 माह के लंबे समय के बाद एक माँ की जिम्मेदारी यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि असली कवायद तो उसके जन्म के बाद ही शुरू होती है। उसकी सही परवरिश, उचित पालन पोषण, आहार और साथ ही साथ टीकाकरण, ये सभी बातें बच्चे के भविष्य को सुखी और सुरक्षित बनाती हैं। तो टीकाकरण क्या है और क्यों जरूरी है, और

0: कौन कौन से टीके बच्चों को कब लगवाने चाहिए, इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी को। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद आपको।
0: सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीकाकरण क्या है और ये क्यों जरूरी है।
1: जी हाँ, देखिए, दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, खासकर बच्चों को कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। और आप ये देखें कि कोई बीमारी होने के बाद हम इलाज शुरू करें वो ना सिर्फ बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी इलाज सफल भी नहीं होता, और सफल होता भी है तो कई बार बहुत खर्चीला होता है। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि हम उन बीमारियों को होने ही ना दें, और उनको ना होने देने के लिए इस वक्त जो विज्ञान ने एक बहुत अच्छी जो खोज की है वो है टीकाकरण।
0: जी, तो यानी प्रिकॉशन बेटर देन क्योर।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीकाकरण की जिसकी हम बात कर रहे हैं कितना जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा, जो राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम, उसमें 6 जानलेवा बीमारियों से बच्चों को प्रोटेक्ट जाता है, उनसे रक्षा की जाती है, जैसे कि पोलियो, DPT, हेपेटाइटिस बी भी अभी अभी इंक्लूड किया जा रहा है उसमें, खसरा, मीजल्स जिसको बोलते हैं, ये इस तरह के टीके, जैसे खसरा है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पोलियो जिंदगी भर के लिए अपंगता कर सकता है बच्चे में, DPT से होने वाली 3 बीमारियां जैसे कि गलघोटू, टिटनस एवं कुकर खांसी भी बच्चे को ना सिर्फ जानलेवा है बहुत बीमार भी बना सकती है या कमजोर भी कर सकती है।
0: अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि सरकारी अस्पतालों में जो टीके उपलब्ध होते हैं क्या वही लगवाने चाहिए या इसके अलावा कौन से टीके होते हैं।
1: जी हाँ, सरकारी अस्पताल में जैसे मैंने अभी आपको जानकारी दी कि पोलियो, DPT, खसरा और एक जो छूट रहा था वो है BCG। BCG जो TB से बचाव का टीका होता है, इसके अलावा भी जिस तरह से कई बीमारियां हैं उसी तरह से कई तरह के टीके बाजार में आजकल उपलब्ध हैं। 2 तरह के शेड्यूल चलते हैं भारत में, एक है EPI शेड्यूल जिसमें कि सरकारी टीके इंक्लूड हैं, जो कि सरकार सभी राज्यों की सरकारें इसको दे रही हैं। साथ ही साथ दूसरा शेड्यूल होता है हमारी जो एकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये जो कि शिशु रोग विशेषज्ञों की संस्था है, इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे दूसरे टीके भी हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने चाहिए। बट इन नए टीकों की कीमत क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए शायद वो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाते। उनमें से बहुत सारे टीके आजकल जो इस्तेमाल में हो रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा रोटा वायरस डायरिया का टीका, ये टीका एक पिलाया जाने वाला टीका है, इससे रोटा वायरस नाम के 10 से बचाव होता है। इसी तरह का एक टीका बहुत ही जरूरी है और जो कि बहुत महंगा भी नहीं है, वो है हिब। हिब से 3 गंभीर बीमारियों से रक्षा होती है, एक तो निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर एवं एक गले का गंभीर इन्फेक्शन होता है उसको एपिग्लोटाइटिस बोलते हैं। तो ये 3 बीमारियों से हिब नाम के वैक्सीन से रक्षा होती है। इसी तरह का एक वैक्सीन जो मैं बोलूंगा कि भारत की हर लड़की को लगा होना चाहिए, खासकर शादी के पहले तो हर लड़की को लग जाना चाहिए, वो है MMR का टीका, जो कि बहुत महंगा भी नहीं है। MMR का टीका 3 बीमारियों से रक्षा करता है, जैसे कि खसरा, मम्स जिसको हम गलसुआ बोलते हैं, और एक रुबेला नाम की बीमारी होती है। ये जो 3 बीमारियां हैं, मम्स, रुबेला और मीजल्स, ये तीनों ही बीमारियां यदि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को हो, इनमें से तीनों में से कोई भी एक, तो गर्भस्थ शिशु को अत्यधिक गंभीर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इस वजह से ये टीका 15 माह की उम्र पर बच्चों को लगता है, तो बच्चियों को खासकर, तो यदि वो 15 माह की उम्र पर आज हम जो लगवा रहे हैं वो ना सिर्फ इस बच्ची की रक्षा करेगा इन बीमारियों से बल्कि अगली पीढ़ी की भी।
0: जी बिल्कुल। तो यानी लड़कों को ये टीका लगना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि लड़कियों को लगे। जी, ये बताइए कि इतने, जब सारी तरफ बीमारियां फैली हुई हैं और टीके इतने महंगे हो रहे हैं कई टीके, तो ये क्यों नहीं सरकारी बातों में शामिल किए जाते हैं कि ये सस्ते हो जाएं।
1: जी हाँ, देखिए, जब भी कोई नई बीमारी का टीका आता है ना तो वो काफी महंगा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिसर्च इन्वॉल्व होती है, उसको खरीदने वाले लोग कम होते हैं। इसे मोबाइल फोन, जैसे आपने सुना होगा कि पहले मोबाइल फोन बहुत महंगे होते थे, आज उनकी स्लैश डाउन होते जा रही कीमत। तो जो भी टेक्नोलॉजी है यदि कोई रिसर्च करके इमीडिएटली कोई लेकर आ रहा है तब ज्यादा महंगे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे सस्ते होते जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि हेपेटाइटिस बी का टीका जब शुरुआत में आया था तो लगभग 2000 रुपए का हुआ करता था, आज से लगभग 12-15 साल पहले, और आज जो है उस टीके की कीमत 50 रुपए है। तो टीकों की कीमत लॉन्च के समय ज्यादा होती है, बट हम अपने बच्चों को तब तक के लिए इंतजार नहीं करा सकते, देना होगा। और सरकार अपनी ओर से कोशिशें करती है कि जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा टीकों को शामिल किया जाए, जैसे कि अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस बी को हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई टीका बच्चे को समय पर नहीं लग पाया, यानी देर हो गई उसे लगवाने में, तो कितने समय के अंदर फिर उसे लग जाना चाहिए?
1: जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कायदे से तो पहला टीका बर्थ के समय लग जाता है, जिसको पोलियो जीरो डोज बोलते हैं हम लोग, और BCG, लेकिन और फिर 6 हफ्ते पर लगता है, 10 हफ्ते, इस तरह से शेड्यूल है। लेकिन सपोज कभी कोई माँ बाप नहीं लगवा पाए समय पर टीका, तो भी उस टीके को समय रहते दिया जा सकता है। उसके लिए जस्ट आपको ये करना है कि अपने शिशु रोग विशेषज्ञ की एक बार सलाह लेनी है, तो वो जो भी टीके छूटे हैं उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना देगा। हाँ, ये पूरी तरह संभव है कि जो टीके छूट गए हैं उनको भी दोबारा लगाया जा सके।
0: जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जब महिलाएं माँ बनती हैं और पहली बार डॉक्टर के पास जाती हैं बच्चे को लेके, तो उन्हें एक कार्ड दिया जाता है बच्चे को टीके लगवाने के लिए। तो ये कौन कौन से टीके इनमें से ऐसे हैं जो कि बेहद ज़रूरी होते हैं? जैसे सबसे पहले आपने बताया BCG का टीका लगना, और कितने वर्ष तक, 7 साल 8 साल 9 साल, कितने समय तक बच्चे को रेगुलरली डॉक्टर के पास टीका लगवाने के लिए ले जाना चाहिए?
1: जी हाँ, देखिए सबसे ज़रूरी टीके तो जो हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हैं, BCG जो, और पोलियो जन्म के समय, इसके बाद DPT 6 हफ्तों पर, 10 हफ्ते की उम्र पर DPT और पोलियो का डोज फिर से, फिर 14 हफ्ते की उम्र पर फिर से DPT और पोलियो का डोज, और 9 महीने पर खसरा, 1.5 साल पर DPT पोलियो अगेन, और 5 साल पर DPT एवं पोलियो फिर से। ये टीके सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, यदि कभी छूट जाते हैं तो भी संभव है कि इनको दोबारा लगाया जा सके।
0: जी, आपसे फिर जानना चाहेंगे कि कितने वर्ष तक, कितने उम्र तक बच्चों को टीके लगवाए जाएं ताकि इसका असर बना रहे?
1: हाँ जी जी, जन्म से लेके 5 साल की उम्र तक रेगुलर टीकाकरण होता है
0: जी।
1: वो जो आपने कहा था जो चार्ट के हिसाब से, तो वो चार्ट के हिसाब से 5 साल तक, लेकिन 5 साल के ऊपर के भी बच्चों को कई टीके लगाए जा सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड का होता है, टिटनस का टीका होता है, और आजकल एक आधुनिक टीका अभी अभी जो आया है वो है गर्भाशय के कैंसर से बचाव का टीका, जो कि ज्यादातर किशोर लड़कियों को लगाया जाता है, वो 10 साल से ऊपर की लड़कियों को, और 10 से 45 साल की बीच की युवती को ये लग सकता है टीका।
0: जी, जागरूकता की अगर हम बात करें तो आप चूंकि डॉक्टर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग आपके पास ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि हम समय पे टीका नहीं लगवा पाए? यानी कि सरकार जो इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, तो आज लोग कितने पीछे हैं?
1: जी हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो देश है
0: जी,
1: ये विश्व के मानचित्र में हम यदि हम देखें तो टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये कि हम सारी कोशिशें सरकार की, संस्थाओं की, इसके बावजूद भी हम अपनी बहुत सारी जनता को इसके लिए मोटिवेट नहीं कर पाए, प्रेरणा नहीं दे पाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, इनफैक्ट हर एक बच्चे को टीकाकरण कराएं। आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि पोलियोमाइलाइटिस सिर्फ पूरी दुनिया में 3 देश बचे हैं, पाकिस्तान, नाइजीरिया एवं भारत, जहां से इरेडिकेट नहीं, अभी तक उसका स्टेटस मिला, जड़ से खत्म नहीं हुआ। और मैं समझता हूं ये हमारे समाज को भी देखने की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि एक शर्मनाक बात है कि पूरे विश्व में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो उसको हम सफलता से नहीं चला पा रहे।
0: जी, तो आपके कहने का अर्थ है कि सभी पेरेंट्स को, सभी माता पिता को ये बेहद जरूरी है कि जब भी बच्चा छोटा हो उन्हें टीकाकरण।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, आप क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को, माता पिता को?
1: देखिए, टीकाकरण से संबंधित कुछ भ्रांतियां रखते हैं माता पिता की, इससे कभी कभी साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक और भ्रांति हमारे गांव में है, आसपास के, जैसे मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्लास लेता हूं तो मुझे पता चली कि कुछ लोग सोचते हैं कि टीका लगाने से बच्चा दुबला हो जाता है।
0: जी
1: ठीक है, ये सभी तरह की व्यर्थ की भ्रांतियां हैं। हाँ, थोड़े से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स मैं आपको टीकों के बताता हूँ, जो कि पूरी तरह से कोई उनमें नुकसान नहीं होता बच्चे को, जैसे कि DPT से बुखार आना, DPT से बुखार आ सकता है और थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, और यह भी मात्र 24 घंटे से 48 घंटे के लिए होता है। मार्केट में इस एक टीका उपलब्ध है जो कि पेनलेस बोला जाता है, जिससे बाद में दर्द एवं बुखार कम होता है, बट मैं कहूंगा कि नहीं, वो थोड़ा दर्द और बुखार होगा भी तो भी उससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो अत्यधिक महंगा टीका है, और जो माता पिता खरीद सके उनको लगाना चाहिए, लेकिन बाकी माता पिता यदि दर्द वाला टीका लगवा रहे हैं तो वो भी कोई गलत तरीका नहीं, गलत ऑप्शन नहीं है।
0: जी, अगर हमें भविष्य सुखद बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो 24 और 48 घंटे का बुखार ज्यादा मायने
1: रखता है बच्चे की भलाई के लिए। जी
0: जी, तो डॉक्टर साहब, और ऐसी कोई बात टीकाकरण के संबंध में जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाह रहे हैं और छूट रही हो?
1: एक तो जब बच्चा हो तो एक ना एक बार जरूर शिशु रोग विशेषज्ञ से आप जरूर मिलें, ठीक है। वो उससे ना सिर्फ आपको टीकाकरण से संबंधित बल्कि खान पान, दूध कैसे देना है, माँ की देखरेख से संबंधित जो वैज्ञानिक सलाहें मिल जाएंगी।

0: उसी दौरान पर आपको वो टीकाकरण का कार्ड भी मिल जाएगा और उसमें सब कुछ डेट सहित शिशु रोग विशेषज्ञ आपके लिख लेंगे। यदि आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता नहीं है तो अपने नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां भी आपको एक कार्ड मिलेगा और इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी और अपने बच्चों को जरूर अस्पताल में देखरेख में रहें, डॉक्टर की या फिर जो भी उपलब्ध चिकित्सक या एक ट्रेन्ड पर्सन वहां पास में।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए और टीकाकरण से संबंधित इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, निश्चित रूप से सभी श्रोता इससे लाभान्वित होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बच्चों में टीकाकरण कब और क्यों, इस विषय पर आपने सुनी डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल से कामना श्रीवास्तव की बातचीत। सखियों, जीवन में स्वस्थ रहना और निरंतर विकास करना बहुत जरूरी है और यदि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए हम अपना विकास करेंगे तब तो पर्यावरण से अच्छा और सच्चा मित्र हमारा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि हमने पर्यावरण में थोड़ा भी असंतुलन की स्थिति निर्मित की या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो धरती के अंदर और बाहर की हलचल प्राकृतिक आपदा का कौन सा भयावह रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। भूकंप, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, सूखा, सुनामी ये प्राकृतिक आपदाओं का ही रूप है, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित नहीं होती। भूल, लापरवाही, व्यवस्थाओं में कमी का नतीजा ही है सड़क या रेल दुर्घटना, कारखानों में आग लग जाना। कहने का मतलब यह है कि ऐसी अनअपेक्षित घटनाएं जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाए उसे आपदा कहते हैं। सखियों, आपदाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही प्रबंधन से उनके जोखिम और नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समय समय पर रेडियो, टीवी और घोषणाओं के माध्यम से दी जाने वाली चेतावनी का पालन किया जाए। ये तो हुई आपदा प्रबंधन से पहले की तैयारी। आपदा प्रबंधन के दूसरे चरण की बात करें तो ये है आपदा के तुरंत बाद प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, चिकित्सा, भोजन, पानी उपलब्ध कराना। इस बचाव कार्य का बहुत अहम हिस्सा सखियों आप और हम भी बन सकते हैं। और आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण है बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल मार्ग, घरों का पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास यानी जीवन को दोबारा सामान्य और स्थिर बनाना ताकि आपदा प्रभावित लोगों का घर और जीवन दोबारा बस सके। और इन सब में सबसे जरूरी है धैर्य बनाए रखते हुए हमेशा एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहना, प्रबंध कार्यों में सरकार को सहयोग देना ताकि आप औरों के लिए मिसाल बन सकें।

सुदेश भोंसले, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण की आवाज में यह गीत हमने सुना। फिल्म का नाम था हम। उम्मीद करते हैं सखियों, इस गीत की ही तरह आप और हम हमेशा एक साथ होंगे, आपका और हमारा स्नेह यूं ही बरकरार रहे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी प्रगति के मार्ग प्रशस्त करते रहें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ महिला सभा कार्यक्रम से रुबीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।

वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे देवी गीत, गैल्हाई और लेद।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, प्रस्तुत कर रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं रागिनी तैलंग, इनके स्वर में आज आप सुनेंगे कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रागिनी तैलंग के गाए हुए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ, आकाशवाणी।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी और

कार्यक्रम का पहला गीत दबंग फिल्म से हमने लिया है। आवाजें श्रेया घोषाल और सोनू निगम की हैं, गीतकार जलीस शेरवानी और संगीतकार साजिद वाजिद।

ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत है। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। इस वर्ष की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में उद्यमिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए आदर्श नेतृत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य सेवा और समर्पण के जरिए समाज के सभी वर्गों में न्याय, समरसता और लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। ये संदेश उनकी संस्कृत सुभाषितम श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले 10 जून को उन्होंने जनसेवा को सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इसराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि कश्मीर से लेकर देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक कवरेज देने की योजना है। कार्यक्रम में प्रसार भारती अध्यक्ष प्रसून जोशी, आकाशवाणी महानिदेशक राजीव कुमार जैन और जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी उपस्थित थीं। इंदौर में जारी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र पर पहला सत्र पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की चर्चा जारी है। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कल होगी। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज ही सुनवाई की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों के लिए तैयार वैज्ञानिक कृषि रोडमैप को भी लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान के तहत नकली खाद की पहचान, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन और नई कृषि पद्धतियों की जानकारी भी दी जाएगी। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई को दिल्ली एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर रही है। इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास किरिबाला सिंह फिलहाल भोपाल की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, बुंदेलखंड संभाग के कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। वहीं मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी में ओलावृष्टि का अलर्ट भी है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मालवा, निमाड़ के जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के माकननगर में कल 12 से 15 जून तक अंबेडकर भवन हाई स्कूल परिसर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगर मालवा कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक पूरा कराया जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क

0: माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों

0: और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत लेकर हम हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आनंद फिल्म के गीत से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत सलिल चौधरी का है और आवाज लता मंगेशकर की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंश शाह, पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। ये खत आया हुआ है बगबुड़वा पथरिया से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, और इसी गीत को पसंद करते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आनंद में।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक।

शेख, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। ये चिट्ठी आई है आमा खोडरा कबीरधाम से। लिखने वाले श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा और दक्ष प्रिया नेताम। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से इसी गीत को पसंद करते हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, प्रगति नाचानी, मिथिल नाचानी और उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से ये खत आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र, प्रेमाबाई और ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म जहरीला इंसान में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत निर्देशक हैं आर डी बर्मन।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश के कुछ गीत हम आगे भी आपको सुनवाएंगे, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल
1: सुनिए। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत तैयार किया है, आवाज किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। सुनना चाहते हैं कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं।

हैं सोहन जोशी, विष्णु जोशी, अंकिता, अमृता और लोकेश जोशी। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल और संदलपुर से कालीचरण यादव।

अब हम आपको सुनवाते हैं रज़िया सुल्तान, फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ। बोल जानिसार अख्तर के हैं और धुन बनाई है खय्याम ने। पसंद आप सबकी है। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। पीपरपारा, पालचुआ, मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। ये चिट्ठी आई हुई है शाजापुर से। लिखने वाले श्रोता हैं एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को पसंद करते हैं। तिलदा छत्तीसगढ़ से प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी चंद्र, पिया रानी चंद्र, ओशीम कुमार चंद्र और सोमेन कुमार चंद्र, और धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री।

और कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं, हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरव, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, और ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी फरमाइश पर फकीरा फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर को, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए आदर्श नेतृत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य केवल सेवा और समर्पण के जरिए समाज के सभी वर्गों में न्याय, समरसता और लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया और इंदौर में जारी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश केंद्र है।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम।

रात 8 बजे सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत साइंस एंड टेक पर केंद्रित कार्यक्रम। रात 10 बजे सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे सुनिएगा उस्ताद रहमत अली खां का सरोद वादन राग रागेश्री। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज ग्रामीण बहनें सुनेंगी सुश्री ममता वाजपेयी के साथ की गई भेंट वार्ता, मॉनसून के दौरान किचन गार्डन और बगीचे की देखभाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब सम्पन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रेल देश भर के स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगी। इसमें स्टेशन भवन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम समेत सभी अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच होगी और पीवी सिंधु

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अमीषा पटेल
1: और मैं आद्या नायक।
0: साथियों, हमेशा की तरह हम फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए नई नई जानकारियां और युवा सोच से जुड़े कुछ खास विषय। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की आज के दो प्रश्नों के साथ।
1: हमारा आज का पहला प्रश्न है, AI शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया था?
0: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आज की चर्चाओं में। आद्या, अगर कोई हमसे पूछे कि हमारी पहचान क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे?
1: हमारा नाम, हमारा शहर या कुछ और?
0: आद्या, मुझे लगता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे नाम या पते से नहीं बनती। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार और जिन मूल्यों के साथ हम बड़े होते हैं, वही हमारी संस्कृति कहलाते हैं।
1: अमीषा, जब हम हमारी संस्कृति, हमारी पहचान की बात करते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है?
0: मेरे मन में सबसे पहले आती है भारत की विविधता, जहाँ अलग अलग भाषाएं, खान पान, पहनावे, त्योहार और परंपराएं हैं। और सबसे खास बात यह है कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम सब एक भारतीय पहचान से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल अमीषा, मुझे लगता है कि संस्कृति को अक्सर केवल त्योहारों या पारंपरिक कपड़ों तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि संस्कृति उससे कहीं अधिक व्यापक है। यह हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार और हमारी जीवन जीने के तरीके में दिखाई देती है।
0: सही कहा। जब हम किसी बड़े व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम केवल एक काम नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी संस्कृति को जी रहे होते हैं।
1: हाँ, और यही छोटी छोटी बातें हमारी पहचान बनाती हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
0: भारतीय संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि यह हमें आधुनिक बनने से नहीं रोकती, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आगे बढ़ना सिखाती है।
1: पर अमीषा, आजकल तो युवा पीढ़ी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वे संस्कृति से दूर हो रहे हैं।
0: आद्या, मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि आज के युवा अपनी संस्कृति को नए तरीके से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कोई लोक संगीत को नए मंच दे रहा है, कोई क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहा है, तो कोई अपनी लोक कलाओं को डिजिटल माध्यम से पहचान दिला रहा है।
1: और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संस्कृति को बचाने का मतलब केवल उसे संग्रहित करना नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ाना भी है।
0: आद्या, हमारी संस्कृति कोई चीज नहीं होती जिसे केवल किताबों में पढ़ा जाए। संस्कृति को अपने व्यवहार और जीवन में अपनाना भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ अमीषा, क्योंकि अपनी संस्कृति अपनाना ही अपनी पहचान को मजबूत करना है।
0: साथियों, अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म उरी से, जिसमें आवाज दी है शाश्वत सचदेव और शांतनु सुदामी ने।

0: मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय भारती जी को। डॉक्टर संजय भारती, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे कि हमारी जो श्वसन तंत्र है उसकी बेसिकली कार्य प्रणाली क्या होती है।
1: देखिए, मैं आप सभी के लिए यदि बहुत सरल भाषा में बताना चाहूं तो श्वसन तंत्र का कार्य हमें वातावरण से ऑक्सीजन लेना, मतलब हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन तंत्र के द्वारा, और जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम वातावरण में छोड़ते हैं श्वसन तंत्र के द्वारा। हम इसको सरल भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं, अदरवाइज इसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
0: ये तो बात हुई डॉक्टर साहब कार्यप्रणाली की। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आजकल ऐसी कौन सी बहुत सारी बीमारियां हैं श्वसन तंत्र से संबंधित जो युवाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं।
1: जी देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि युवाओं में श्वास की संबंधी बीमारियों के क्या क्या कारण होते हैं।
0: जी,
1: एक बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, तो हम इसको ऐसे कारणों को विभाजित करते हैं जैसे श्वसन तंत्र के खुद से उसके संबंधित कारण।
0: जी,
1: जैसे अस्थमा आप सभी जानते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको कहते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे वायरल निमोनिया, जैसे अभी कोविड हुआ था, इस तरह के कोई निमोनिया होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, सीओपीडी थोड़ा सा जल्दी, इतनी जल्दी एज में नहीं होती, 40 से 50 के बाद होती है, तो इसलिए, लेकिन उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक इंटरस्टिशियल लंग डिसीज होती है जिसे फेफड़े में सिकुड़ने की बीमारी कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स होती है जिसमें कि फेफड़े में कहना चाहिए हवा भरने की बीमारी कही जाती है, और कुछ ऐसे कारण जैसे बचपन में किसी को बार बार इन्फेक्शन होते थे उसके कारण जो फेफड़े में कुछ बदलाव आ गए जिन्हें ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो भी आगे चल के यंग एज में आपको सांस की बीमारी का कारण बन सकते हैं।
0: जी।
1: फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जैसे कि फेफड़े की जो नलिकाएं होती रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें थक्का बन जाना, वो उसके अलावा ये तो हो गए फेफड़े से संबंधित कारण। अनेक अलग कारण होते हैं जैसे हृदय संबंधी कारण, उनमें भी आप मरीज को सांस ही फूलती है
0: जी।
1: वो जब प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास तो सांस फूलती है, लेकिन कारण अलग होते हैं फेफड़े के नहीं होते। जैसे हृदय संबंधी बीमारियां हो गई, जन्मजात हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, हार्ट में जो वॉल्वुलर डिसीज होती है जिसमें वॉल्व कहते हैं उससे संबंधित बीमारियां होती है, उसमें भी ऐसे ही होता है। जो रिदम बीट होती है, हार्ट बीट की अनियमितता, अरिदमियास कहते हैं, उससे संबंधित बीमारियां, ये भी सांस से ही प्रेजेंट करेंगी। फिर हेमेटोलॉजिकल बीमारियां जैसे एनीमिया, खून की कमी, आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कुछ अलग टाइप की बीमारी ये होती हैं, रक्त कणिकाएं अलग तरीके की बनती हैं, उसके कारण भी सांस फूलती है
0: जी।
1: फिर जैसे अलग कुछ ऐसे कारण हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, जैसे थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस हो जाती है, ओबेसिटी, मोटापे के कारण भी सांस फूलती है, कुछ एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जैसे आपको बताऊं, पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसको आप इग्नोर करते हैं कि नहीं ये तो कोई सोच भी नहीं पाता, वो भी कारण हो सकते हैं सांस बढ़ने के
0: जी।
1: फिर कुछ और भी न्यूरोमस्कुलर कारण होते हैं जैसे मायस्थेनिया ग्रेविस हो गई, प्रेगनेंसी में भी होता है, और बहुत आपने देखा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आजकल लोगों की है कि बिल्कुल बैठे रहना, ऐसे यदि ऐसे लोग कभी थोड़ा सा भी काम करते हैं तो भी सांस फूल सकते
0: जी। जी डॉक्टर साहब, वर्तमान में क्या युवाओं में पहले की अपेक्षा सांस संबंधी या श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं कि क्या केवल ये एक भ्रांति है?
1: देखिए, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है जो कि मुझे लगता है युवाओं को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज के समय निश्चित ही श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। कारण बहुत सारे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल, एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम ज्यादा मेहनत करते नहीं है तो हमारा शरीर डीकंडीशन हो जाता है
0: जी।
1: थोड़े से काम करने में सांस फूलने लगती है, फिर मोटापा बढ़ता है, तो मोटापे के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां उसके कारण खुद ही हो जाती हैं, उससे सांस फूलती है। फिर स्मोकिंग का चलन आजकल बड़े जल्दी हो गया है, स्कूलों में लोग बहुत जल्दी एज में स्मोकिंग करने लगे हैं
0: जी।
1: और एक नई चीज आज कल आई है जिसको बहुत जानना जरूरी, वेपिंग
0: जी। जी,
1: इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होता है
0: जी,
1: इसके थ्रू लोग निकोटीन लेते हैं
0: जी।
1: तो ये एक वेपिंग क्या है, ना केवल वेपिंग के बारे में मैं बताऊं कि स्कूलों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है
0: जी। जी, जी।
1: स्कूलों में, पहले तो लोग कॉलेज उसके बाद में शुरुआत करते थे, आज के समय में लोग स्कूल में ही वेपिंग शुरू कर देते हैं
0: जी।
1: और उसके कारण ना केवल सांस संबंधी बीमारियां, सांस से मतलब परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, मतलब फेफड़े में कुछ ऐसे टाइप के बदलाव आ जाते हैं जो कि जीवन भर के लिए फेफड़े को कमजोर बना सकते हैं
0: जी। जी।
1: तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि लोग इसको समझें। फिर पॉल्यूशन, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है
0: जी।
1: वो एक कारण है।

0: फिर कुछ ऐसे कारण जैसे इंडस्ट्री में कई काम करना, केमिकल इंडस्ट्री में काम करना, फिर सिलिकोसिस, एस्बेस्टस, जो सीमेंट वगैरह जहां डस्ट निकलती है ऐसी जगह काम करना, ये सब कारण जो है जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये सब कारणों से सांस की संबंधी बीमारियां निश्चित ही बढ़ रही है।
1: जी जी जी जी जी डॉक्टर साहब, आपने स्मोकिंग और वेपिंग की बात की, तो आप हमारे युवा श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो इन सब चीजों से, श्वसन तंत्र के जो रोग हैं इनसे बचाव के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो पहले हम अनुशासन से रहा करते थे सभी लोग करीब करीब, कि भाई समय से उठना, समय से अपनी दिनचर्या का यानी निर्वहन करना
1: जी।
0: और दुर्गुणों से बचे रहते थे काफी हद तक
1: जी।
0: लेकिन आज के तारीख में क्या हो रहा है कि सब कुछ इजीली एसेसिबल है, तो इस कारण जो व्यसन है उसकी तरफ युवा जो है बड़ी जल्दी आकर्षित हो रहे हैं, उपलब्धता आसानी से हो जाती है
1: जी।
0: तो एक ये बड़ा कारण है
1: जी।
0: दूसरा कि जैसे मैंने कहा था कि मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी आजकल, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, बच्चे जो हैं मैदानों में कम खेलते हैं, मोबाइल में और टैब में अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, तो उस कारण उनकी जो ऊर्जा है यानी सब कार्बोहाइड्रेट फैट इकट्ठा होता है बॉडी में और धीरे धीरे वो मोटापा बढ़ता जाता है, अनेक रोग उससे उत्पन्न होते हैं, न केवल श्वास संबंधित, मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हमें बहुत इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को हम सभी त्यागें
1: जी।
0: कसरत व्यायाम जो है वो अति आवश्यक है
1: जी।
0: भोजन में जो हम जंक फूड है उस पर हम बहुत ज्यादा चले गए हैं
1: जी।
0: हमेशा पैक्ड फूड पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बड़े जल्दी हम उसको खाते हैं ज्यादा
1: जी।
0: तो इसको हमें बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है
1: जी, जी।
0: सभी अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को इन सभी चीजों से दूर रखने की कोशिश करें, व्यसनों से तो करना ही है, साथ में घर में भी आप लाइफ स्टाइल उनकी सेडेंटरी ना होने दें, उनका मोटापा ना बढ़ने दें, उनको जंक फूड से बचाएं, क्योंकि जंक फूड कहने के लिए बड़ा लोगों को आसान लगता है, अरे नहीं खाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेली लाइफ में घुस चुका
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और उसके बिना नहीं रहते लोग, तो उससे बचना बहुत आवश्यक है
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें खान पान की या डाइट की, तो आप हमारे सुनने वाले को क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब एक प्रॉपर हेल्दी डाइट, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है?
0: देखिए, जो हमारी भारतीय डाइट शुरू से रही है, प्राचीन काल से जो परंपरा है कि हम पूरी हेल्दी डाइट हमारी थाली में परोसी जाती थी
1: जी,
0: वो सबसे उत्तम है
1: जी।
0: उसके अलावा आप फल, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है
1: जी,
0: जो मतलब ऐसी चीजें जो कि पैक्ड नहीं है
1: जी,
0: वो खाना सबसे उत्तम है
1: जी।
0: यदि हम कोई भी चीज, जैसे मान लो हम यही अनाज, ये जो हमने बताया, जैसे हम जो दाल चावल या चपाती या कुछ भी, यदि ये सब पैक्ड वाली खाते हैं
1: जी,
0: तो भी वो नुकसान करती है
1: ओके,
0: क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो नुकसान करते हैं, धीरे धीरे धीरे वो शरीर को बहुत कमजोर करते जाते हैं। और आजकल एक और बीमारी जो कैंसर जो बढ़ी है, कैंसर के बढ़ने का कारण भी यही सब चीजें हैं
1: जी,
0: तो हमें उससे भी सावधान रहना कि सांस संबंधी बीमारी भी बढ़ेगी कैंसर के कारण भी
1: जी,
0: तो हमें उसको बचाने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल करनी है, मतलब खाना पीना हमारा प्राचीन, हमें वहीं लौटना पड़ेगा, हम जहां से हम डाइवर्ट हो गए थे, हम रास्ता हमने बदल दिया था
1: जी,
0: हमें वापस वहीं लौटना पड़ेगा, उन्हीं चीजों पे आना पड़ेगा और कोशिश करें घर में बनी हुई साफ सुथरी चीजों का सेवन करें, बाजार की चीजें कम से कम खाएं और खासकर पैक्ड फूड बिल्कुल ना खाएं
1: जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, पुनः मैं वही संदेश देना चाहूंगा कि हम सभी के लिए एक बड़ी आवश्यक चीज है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, अनुशासन का पालन करें, व्यायाम करें, व्यसनों से दूर रहें
1: जी,
0: भोजन अच्छा लें और पेड़ पौधे लगाएं
1: जी,
0: क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ सबसे ज्यादा आवश्यक है
1: जी। डॉक्टर संजय भारती जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने युवाओं में होने वाले श्वसन रोग, कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे। हम आशा करते हैं हमारे सुनने वाले इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आपको आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था युवाओं में होने वाले श्वसन संबंधी विकार, कारण और बचाव। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय भारती, जिनसे बात की थी नीला बाजपेयी ने। साथियों, अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुड न्यूज से, जिसमें आवाज दी है रोचक कोहली, लव और अकाशा ने।

0: दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को पहले से कई ज्यादा आसान बना दिया है। आज हम जो स्मार्टफोन्स, नेविगेशन एप्स और ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं, उनमें से कई एआई की मदद से काम करती हैं। और यही है हमारी चर्चा का अगला विषय।
1: बिल्कुल आद्या, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को सीखने, सोचने और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एआई मशीन्स को स्मार्ट बनाता है।
0: आज एआई हर फील्ड में अपनी जगह बना रहा है, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, हर जगह एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
1: जैसे कि हॉस्पिटल में एआई डॉक्टर्स को डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है।
0: डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और एआई डेवलपमेंट जैसी फील्ड्स में जॉब्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
1: बिल्कुल आद्या, इसीलिए आज के युवाओं के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज ही ना करें बल्कि उसे समझें और उससे रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप करें।
0: एग्जैक्टली, फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो लर्निंग कभी नहीं रोकेंगे। कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स एआई के युग में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।
1: साथ ही एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज भी बहुत जरूरी है। हमें प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और फेक इन्फॉर्मेशन जैसे इशू के प्रति भी अवेयर रहना चाहिए।
0: दोस्तों, एआई को हमें कंपटीशन नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए।
1: ये हमारी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है और नए इनोवेशंस को जन्म दे सकता है,
0: क्योंकि आज का युवा ही कल का इनोवेटर, लीडर और चेंज मेकर है।
1: चलिए दोस्तों, अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़क 2 से, जिसमें आवाज दी है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने।

0: दोस्तों, वक्त हो गया है कार्यक्रम के शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का। हमारा आज का पहला प्रश्न था, एआई शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया था, जिसका सही उत्तर है 1956।
1: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जिसका उत्तर है परम 8000।
0: साथियों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त आद्या नायक
1: और अमीषा पटेल को।
0: हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय, नई चर्चाओं और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दिल चाहता है फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, शंकर महादेवन की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत शंकर एहसान रॉय का।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म चमत्कार से। आनंद बख्शी की रचना है और तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अगला गीत हमने लिया है फिल्म चमेली से। आवाज सुनीति चौहान की है, बोल इशाद कामिल के और संगीत संदेश शांडिले का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के संगीत से सजा गीत, आवाज भी सोनू निगम की है। फिल्म का नाम है चंदा की डोली और इस गीत के बोल हैं नुसरत बद्र के।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। राज्य से राज्यसभा की 3 सीटें भाजपा ने जीत ली है। भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नाम वापसी की अंतिम समय सीमा 2:00 PM समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी मारिवेक्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस हमले में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। हालांकि 24 भारतीय चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इंदौर में जारी 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के 3रे दिन भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश के अंदर 3रे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बताया कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश का सब्जी उत्पादन करीब 21,58,000 मीट्रिक टन बढ़कर 257,99,000 मीट्रिक टन हो गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की

0: ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
1: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है,
1: जी
0: या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
1: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर

कृष्ण धन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब यह विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था।

0: और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी।
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी।
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी। अब आप ये बताइए कि श्री

0: अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल,
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं हीरा पन्ना का ये प्यारा सा गीत।

आरडी बर्मन के संगीत से सजा आप गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हीरा वन्ना। खूबसूरत आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की और बोल थे आनंद बख्शी के। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म चश्मे बद्दूर से। इस गीत को गाया है यशुदास और हेमलता ने और संगीत है राजकमल का और बोल इंदु जैन के।

यसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म क्रिमिनल से। कुमार सानू की आवाज है, साध्या है अलका याग्निक ने, इंदिवर के बोल हैं और तर्ज बनाई है MM करीम ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में दामिनी फिल्म का गीत। गीत है समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी

ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी।

पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशरानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण किया जाएगा। आप सुनिएगा भेंटवार्ता, विषय रहेगा मानसून के दौरान किचन गार्डन और बगीचे की देखभाल। जानकारी देंगी ममता वाजपेयी। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष साइंस एंड टेक प्रसारित करेंगे रात्रि 8 बजे। 9:30 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 पर सुनेगा रहमत अली खान का सरोदवादन, राग होगा बागेश्री। और अब एक नज़र हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय रहेगा सुबह 9:15, फिल्म संगीत होगा 9:30 पर। हर रोज की तरह सुबह 10 बजे सुनेगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर बहनें सुनेंगी महिला संसार कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन, राग होगा मंगल भैरव। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें की सुने। 12 बजे 12:30 पर और रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुन सकेंगे धारावाहिक जंग लगी तलवार का 7वां भाग। दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात्रि 9:45 पर। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा होगा, जिसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रस्तुत किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुनेगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार की 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ ड्राइंग बिजनेस।

रात्रि 9:30 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम खेल जगत, जिसमें आप सुनेगा वार्ता आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप। वार्ताकार होंगी प्राची तिवारी। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन, राग होगा सरस्वती।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में पीएम मोदी का संदेश, दुनिया की अनिश्चितता के बीच आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर भारत। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, इजराइल समेत कई देशों के नेताओं का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 जून को आयुष मंत्रालय के ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ने की अपील की और प्रदेश की तीनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित रिटर्निंग ऑफिसर ने सौंपे प्रमाण पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता बताया। इस वर्ष बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इजराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है और आज ये एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी मारविक्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस मामले में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। हालांकि 24 भारतीय चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बावजूद देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। इंदौर में जारी 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के तीसरे दिन भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक कूटनीति और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की है और अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। सम्मेलन में शामिल इथियोपिया के एक प्रतिनिधि ने कहा,
2: मैं इंडिया में बहुत बहुत खुश हूँ, भारत में बहुत खुश हूँ। हमारा दोनों देश, प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार हमारा देश गया था, अच्छा स्टेट विजिट था। हमारा प्रधानमंत्री, इथियोपिया का प्रधानमंत्री भी अच्छे से स्वागत कर दिया मोदी जी के लिए। सो दोनों देशों बीच में अच्छा रिश्ता है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश

0: राज्यसभा की तीनों सीटें भाजपा ने जीत ली हैं। भाजपा के तरूण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नाम वापसी की अंतिम समय सीमा दोपहर 3 बजे समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में अनियमितता के आधार पर मंगलवार को ही खारिज कर दिया गया था। इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों ने इस योजना को अपने जीवन में आए बड़े बदलावों का कारण बताया है। इस योजना के हितग्राही द्रौपदी राय बताती हैं।
1: उज्ज्वला योजना मिलने से ये फायदा हुआ है कि मेरे घर में अब धुओं से राहत होगी तथा महिला और बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया है, तथा समय की बचत हो गई है। और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस योजना से महिलाओं को सम्मान मिला है तथा जीवन यापन में बहुत सुधार आया है।
0: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने आज भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और ट्विशा शर्मा केस के आरोपी सेवानिवृत्त जज गिरबाला सिंह से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान टीम ने महिला वार्ड, अस्पताल, रसोई घर, पुस्तकालय और आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर का जायजा लिया। सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश के अंदर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बताया कि बीते 4 वर्षों में राज्य का सब्जी उत्पादन करीब 21,58,000 मीट्रिक टन बढ़कर 257,99,000 मीट्रिक टन हो गया है। प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। यशवर्धन सिंह चौहान को कप्तान और लक्ष्य रायचंदानी को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम अगले महीने 3 वनडे और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और खाद वितरण निगरानी की विस्तृत समीक्षा की। खंडवा जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र खालवा में परंपरागत चिकित्सकों भूमका और पढ़िहार के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने सीहोर में सीवन नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। शहडोल संभाग के तीनों जिलों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 126 नए स्कूल भवन बनाने की तैयारी है। मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित भोजनालय के संचालन की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राजगढ़ में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही हैं। नीमच कलेक्टर की पहल पर गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बालिका के उपचार के लिए भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी से 1,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। सिंगरौली जिले में संचालित 5 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। रायसेन स्थित हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा के दरगाह शरीफ परिसर में 1 पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शिवपुरी में थोक उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक की निगरानी और वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण दलों का गठन किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिंथोली में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। अशोकनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई। जबलपुर में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ कैलाश यादव ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

चौपाल कार्यक्रम के सभी सुनैया भैया बहनी हरिन का सुषमा बहनी के राम राम। भैया बहनी, मनई के सर्वांगीण विकास खातिर खेल के महत्वपूर्ण भूमिका होती। और खेल केवल मनोरंजन के साधन भर नहीं हो बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के आधार होते हैं। यह महत्व को देखत आज के दिन यानी 11 जून का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2024 से हर साल 11 जून का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाबे की घोषणा की गई। और एक उद्देश्य रहा लड़किया छेने के जीवन में खेल के महत्व का रेखांकित करब और हर लड़किया छेरन के खेल के अधिकार का सुरक्षित करब घाल रहा। खेल के बड़ा महात्म होता है। खेल शरीर का स्वस्थ, सशक्त और सक्रिय बनावत है। खेल एकाग्रता, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता का बढ़ावा है। खेल से टीम भावना, अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। खेल तनाव से मुक्ति देते हैं और मन का प्रसन्न राखत है। खेल में जीत और हार दोनों से सीखे का मिला था। आज मोबाइल और टीवी के चलन इतना बढ़ गया कि लड़का छेरन के खेल के मैदान से जुड़ाव कम हो गया। ऐसे समय में यदि बस हम ही या शुद्ध बाबत है कि लड़का छेरन का खेल के खातिर पर्याप्त समय, स्थान और अवसर उपलब्ध करावे के चाहिए। भैया बहनी, हम सब की यह जिम्मेदारी होती कि लड़कन के खेल कूद के खातिर उनका जागरूक रखे, मने उनका समय दे पर्याप्त, कि जैसे हर चीज के लिए समय है वैसे खेलों के खातिर थोकाऊ समय निकालें। भाई लोग, खेल मानव जीवन के अभिनंग होते हैं। खेल एक ऐसी गतिविधि होती जो उन आनंद, उत्साह और सीखे के अवसर देती। लड़कियों में खेल अब उतने आवश्यक है जितना भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य। भाई लोग, खेल से लड़कियों के कई गुण विकसित होते हैं। अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, धैर्य और संघर्षशीलता, हार और जीत में स्वीकार करे के क्षमता विकसित होती। खेल व्यक्ति के जीवन में जो उनहोता होकर निखार ले आवत है और जीवन के चुनौतियों के सामना करे के योग्य बनावत है। खेल आज के भागम भाग जिंदगी में सारी गतिविधियां जो हुई कुछ कम हो गई हैं। टीवी और कंप्यूटर के बढ़ात उपयोग चाहे लड़के में हो और चाहे सयान, मैदान से दूर गई देश। भैलो, खेल से शारीरिक स्वस्थ बना था, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा थी, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसा समस्याओं के खतरा जो हो तो वह कम हो जाता है। खेल से शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती। यहीं से कहा थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। भैलो, आज हम जितने आधुनिक युग में जी रहे हैं सब भौतिक संसाधन के उपयोग कर रहे हैं, फिर मानसिक तनाव आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। खेल मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर बनावे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है। खेल से तनाव और चिंता दूर होती, आत्मविश्वास बढ़ाता है, सकारात्मक सोच विकसित होती, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती, अवसाद जैसन समस्या से खेल मुक्ति दिवावत है। भैलो, अपना यह महसूस करें हो कि जो लड़का नियमित खेलत है वह हमेशा प्रसन्न, सक्रिय

आत्मविश्वासी होता है। कुछ लोगों के मानव है कि खेल और पढ़ाई दोनों अलग अलग होता है, पर अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। खेल से विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, समस्या के समाधान कौशल बढ़ाता है, खेल नेतृत्व के गुण विकसित कराता है, प्रतिस्पर्धा के स्वास्थ्य भावना विकसित करती है। और यह कारण नई शिक्षा नीति में खेल आधारित शिक्षा का विशेष महत्व दीन गया है। भैलो खेल सामाजिक समरसता के एक उत्कृष्ट माध्यम होता है। खेल जाति धर्म भाषा और क्षेत्र के सीमा का समाप्त करके लोगों का एक सूत में बांधने के काम करता है। खेल केवल लड़का चाहे भर का नहीं, हम सबका घाल बहुत बड़ी सीख देता है। खिलाड़ी मैदान में प्रतिद्वंदी होते हैं, पर वह प्रतिस्पर्धा जो होते हैं उनका केवल खेले तक रहते हैं। जैसे खेल समाप्त होता है आपस में गले मिलते हैं। यह सीख जीवन में बहुत उपयोगी होती। खेल हमें ही सहयोग करब सिखावत है, दूसरे के सम्मान करब सिखावत है, निर्णय के पालन करब सिखावत है। और यह भावना समाज में एकता और भाईचारा का मजबूत करत है। भैलो हमारे देश के खेल परंपरा बहुत समृद्ध है। प्राचीन काल से खो खो कबड्डी मलखंभ और तीरंदाजी जैसे खेल बहुत लोकप्रिय रहे। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपन पहचान बनाए रहा है। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी खातिर प्रेरणा के विषय है खेल। निरंतर अभ्यास अनुशासन और समर्पण से विश्व स्तर में सफलता पाई जा सकती। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभी समय के अनुसार हर लड़कन का खेल और मनोरंजन के अधिकार प्राप्त है। खेल लड़का चेहरन का सीखे के माध्यम है, सामाजिक कौशल विकसित करता है। खेल आत्म अभिव्यक्ति के अवसरों प्रदान करता है। ऐसे परिवार समाज और विद्यालय की यह दायित्व तो है कि लड़का चेहरन का खेल के खातिर पर्याप्त समय और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करावे। और भैया बहनी लड़के भर का नहीं, बिटियनों का ही खेल के उचित अवसर मिले, ऐसे कि आज बिटिया कोनो क्षेत्र में काहू से पीछे नहीं आए। ऐसे हम सब के यह साझा जिम्मेदारी बन जाती कि हम बिटिया लड़कियाँ हों और चाहे युवा वर्ग हों, हम सब का लड़के ही से आदत डाले कि खेल के प्रति जागरूक हों। भैलो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोनो राष्ट्र के प्रगति के आधार होता है। पिछले 12 सालन में भारत विज्ञान अंतरिक्ष डिजिटल तकनीक जैव प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये प्रयास भारत का वैश्विक स्तर में एक उभरत वैज्ञानिक शक्ति के रूप में स्थापित की है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऐतिहासिक सफलता मिली। इसरो जो है के सफल उपग्रह प्रक्षेपण की चंद्रयान 3 के सफल प्रयास से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचे वाला पहल देश बना। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सूर्य के अध्ययन के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठावेगा। गगनयान मिशन की तैयारी भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का नई ऊंचाई में ले जाए रही है। डिजिटल इंडिया अभियान भैलो UPI यानी ऑनलाइन भुगतान भारत का विश्व के अग्रणी डिजिटल भुगतान देशन में शामिल किस। ग्रामीण क्षेत्र तक इंटरनेट और डिजिटल सेवा के पहुंच बाढ़। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवा और अधिक पारदर्शी और सुलभ है। अब भैया बहनी COVID-19 के महामारी के दौरान स्वदेशी वैक्सीन निर्माण भारत का आत्मनिर्भरता के दिखाई। स्वास्थ्य सेवन में डिजिटल तकनीक के उपयोग पिछले 12 साल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भैया बने उल्लेखनीय प्रगति हासिल करे से। अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल क्रांति, रक्षा तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में मिली सफलता विकसित भारत निर्माण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर, सशक्त और विश्व में अग्रणी राष्ट्र बने निरंतर अग्रसर हो रहा है।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: भैया बहनी अबैया बहुत सुंदर बधाई ये सुनत तहन कोमल मिश्रा के गाबा।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक

0: सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भैया बहनी, एक हुआ समय रहा, जैसे दिन डूबे तो घरे के सयान जितने भर छोट छोट लड़के चेहर हुए सब इकट्ठा बैठा है के किस्सा कहानी के माध्यम से खेल खेल में बहुत जीवन उपयोगी सीख दे देते रहे। और आज अब वो परंपरा दिखाती नहीं आ गांव घरे में, पर हमार चौपाल कार्यक्रम आकाशवाणी अब वो परंपरा का जीवित रखे है। तो चलिए ऐसे एक बघेली कहानी सुनी विधि के लकीर, और कहानी सुना रहे हैं डॉक्टर सुधाकर तिवारी।
3: बात बहुत पुरानी है, देश अंग्रेजन के गुलाम रहा, उहू में राजन के राज दूसर वाली विश्व के लड़ाई शुरू हो चुकी थे। यहीं बीच शहर से बहुत दूर एक गांव में जहाँ जनजाति आदिवासी अधिक बसे रहे, उन्हीं के बीच में रामित रामो केर खपड़ा तिछावा माटी केर घर बना रहा है। उनकर बाल व्यवहार और होशियारी कदिक समझ के उन जमाना के राज सरकार जेका दरबार कहा करा रामित राम का गांव के मुखिया बना दें। उनका थोर बहुत संस्कृत और ज्योतिषों केर ज्ञान रहा, चौगुलबा और कवित्व छंद बातें करत बना दें, न बहुत आसामी रहें न बहुत गरीम, बस बिच्चा के बाद बड़मनसी वाले मनाई रहे। मेड़ौर के लोग बाग उनका इज्जत दें, उनकर कहा बतान माना, गांव के छोट मोट मामला मुकदमा पंचायत कह के पटाए देवा करा, यह सब हो तो उनकर मन दुखी रहा करे कि उनका भगवान नाती दे के जल्द दिन ले लें। को एक टुटका बताए इसके अब की बेर जब लड़का भूई में गिरे तब ओकर निकुआ छेद दिन जाए, यह कीन गा तो बाबा और घर वालन का इतना जल्दी रहे कि लड़का के निकुआ बाएँ कई छेद दिन गा, लोक रीत में बाएँ कई बिटियन के निकुआ छेदे के चलन है। अब एक चाहे टोटका कहा जाए, चाहे विधाता के विधान, चाहे आज के जमाना के एकूपंचर, लड़का जीगा, समय जात देर नहीं लागत, छठे महीना लड़का के पसनी भय, खीर चिखाई गए, गांव घर के मेहरिया जुड़ के ललना के लुटुरी झलरिया बहुत निकला गए, और लाला अमवा ऐसे करह, दुबिया ऐसे छिछले, कमल ऐसे फूले, भमर ऐसे गुंजे हो, गाय के लड़का का आशीषिन। बाबा, काका, महतारी, बाप बहुत खुशी रहा, 6 साल के बहनी बहुत नाचिस कूदिस, पंडित बाबा राश गनिन राश कन्या, और के आधार पर नाव निकरा प्रेम दत्त। कहा थमा समय जात देर नहीं लागत, वह पखना बांध के बेहरास उड़ जात है, प्रेम दत्त कुछ बड़ा भें, बोले लागे बाबा का बब्बा और बाप का दादा, बड़ी बहनी का दिद्दा कहब सीख ली। प्रेम दत्त जब 6 साल के हो लागे तब उनकर बब्बा तिरछा के अपने लड़का से कहीं कि हियन गांव ते दादू को लेके जा शहर मा, नहीं तो हियन का पढ़ी लिखी गोरु चराई, हम गृहस्थी के काम धाम देखब, मनई तिनई हमा सब हो जाई, पढ़ाओ बहुत जरूरी है। सुदिन बिचारा गा महतारी के जू कलो कलो हो कि लड़का का कलेवा को देई, घ्यू चीनी चुपर के रोटी को खवाई, हम तो कहो गंगा जी छाण के सार देखबे नहीं बहन, मेर मेर के बात में महतारी के जीव छटपटात रहा, पे एको न चली। सुदिन में चले के तैयारी भय, सैनमन के गोड़ ले परत चल दिन अपने दादा के साथ सड़क कैद का जौन उनके गांव ते एक कोस दूर रहा, हुआइन लारी चढ़े कर रहा, जौन दिन भरे में एकदार शहर कैती जात रही वह कोयला के बले चलत रही, हियन महतारी रोवे बहनी रोवे, पर मोढ़स यह बात ते रहे कि लड़का पढ़े जात लागे। प्रेम दत्त के दादा के ककियौत भाई शहर में रहत रहें, उम्र में उनसे बड़े रहें, संस्कृत केर बड़े विद्वान बनारस ते पढ़ के आए थे। लंबी चुदई लारे में त्रिपुंड के बीच लाल रक्त चंदन के टीका उनका राजा कहते संस्कृत के सबसे बड़ी पाठशाला में लड़कन का पढ़ावे खातिर चाकरी मिली रही। उन्हें के लगे लड़का का लेके पहुँचे पहलगी प्रणाम भा, आपन बात बताएं कि कक्कू अपना के लगे नाती का पढ़ाई खातिर पठैन है, भाई कहीं के निकाहा है, ओहू का ले आवा, हूँ कौड़ी खेलत है, दोनों साथे रही पढ़ी, दोनों जने साथ है स्कूल जहाँ साथ है पढ़ा, प्रेम दत्त के दादा सबका बनावा खवामा बड़े भाई के सेवा करा। शहर में रहत प्रेमचंद के दादा के नज़र कुछ खुले लागते, जहाँ रहत रहे वहीं के नगीचे एक वैद बाबा के जे राज वैद रहें, राज घराने के इलाज करते रहें कि बड़ा का घर रहा है खूब लंबी और सारी जहाँ सब त्यागे उच मासे माँ वैद।

बाबा गद्दी पर बैठा करा, रोगिन कहे के कई के बलामा, नारी देखा इलाज बतामा। पैद बाबा से आन उमिर के रहा, तो उनकर बड़ी बड़ी सुंदर चमकत आँखी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी का देख के लागे कि कौनो ऋषि मुनि आई। नामो बहुत सुंदर रहा है वाल्मीकि बाबा, उनके हियन बहुत काम करता रहवा करा, को खलबट्टा में जड़ी बूटी काड़ी रहे हैं, को कपड़ छान कर रहे हैं, को खलबट्टा में इलाज घोट रहे हैं, को पुरिया बना रहे हैं, मेर मेर के इलाज, मेर मेर के काम। एक दिन साहस जुटाए के प्रेम दत्त के दादो बैद बाबा के दरबार में पहुँच गए, आपन सगला वृदंत बताएं। बैद बाबा ऊपर ते बहुत कठोर देखा, तो भीतर उतने कोमर, कहीं आवा करा सिखा, समय परे काम दी। दोपहर ढरत प्रेम दत्त के दादा पहुँच जावा करा, और जौन काम बैद बाबा सौंपा तो उन करवा करा। समपुन कर बट लिन्हीस, देश ते अंग्रेज चले गए, राजन के राज खत्म भय, धीरे धीरे उनकर अधिकारों खत्म हो लागे। एक नहीं खत्म भा प्रेम दत्त के दादा केर का कियोत भाई खातिर सेवा भाव, और बैद बाबा के हियन जाय के जड़ी बूटी के कपड़ छान करब और पुरिया बनाओ। कहा थमाना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, बैद बाबा के हियन जात जात उनका इलाज केर ज्ञान होत गा। स्कूली पढ़ाई उनके लगे कुछ नहीं रही, घरन में कुछ संस्कृत केर पढ़ाई भय रही, वही के बल पर बैदक के भाव प्रकाश, सारंग थर संहिता, माधव निदान जैसन कुछ पोथी बेसाहीन, और समय मिले उनका पढ़वा करा, वैद बाबू से कबो कबो पूछा करा। सब ठीक है ठाक चलत रहा, प्रेम दत्त दसमा में पढ़त रहें, तब उनके दादा के ककियोत भाई जिनका वो भगवान आसमान की सेवा करत रहें, उनका और उनके लड़का का छाड़ के अलग अंतर रह लागे। जाको राखे साइयाँ गाँव के घरे ते सीधा पानी घी आवा करे, प्रेम दत्त के बब्बा 30 रुपया महीना पठवा करा, वो जमाना के 30 बहुत होत रहा। प्रेम दत्त के एक मामा फौज में भर्ती हो गए थे, काज ब्याह नहीं करीन थे, वो हर महीना कुछ न कुछ मनी आर्डर पठवा करा। एक बात और सहारा कर रही, 8वां के रिजल्ट निकाह हो के बल पर प्रेम दत्त का 2 साल तक उजीफो मिलत रहा। यही बीच छोट मोट राज्यन का मिलाए के नवा प्रदेश बना देगा, विकास के योजना बनाई लागी, जनता के जीव जामा नीक रहे के खातिर आयुर्वेद औषधालय खोले के योजना बनी, बैदन के भर्ती करे का जागा निकली। कठिन समय बीत जात है, पर जो पाछे में रुक के देखे तो लागत है कि ईश्वर की कृपा ते समय परे ऐसन मनई मिल जात हमार, जो न मिलते तो सब कुछ बहुत कठिन हो जात। ऐसने कुछ प्रेम दत्त के दादा के साथ भा, उनका एक शुभचिंतक जी ज्योतिषाचार्य रहें, जो उनके ककियोत भाई के साथ है पढ़ावत रहें, कहीं फलाने बैदन के भर्ती की जागा निकली है तो हूँ अर्जी लगा दे। प्रेम दत्त के दादा कहें ज्योतिषी जी, हम कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, कौनों मेयर के सर्टिफिकेट नहीं आए, काहे के बल मार जी दी। ज्योतिषी जी कहें तू अर्जी तो दे, फिर ही हम देखब। अर्जी लगा दीन गए, जेका भर्ती करे कर रहा उन साहेब ज्योतिषी जी का बहुत माना, उनके लगे गए और प्रेम दत्त के दादा के वृदंत बतावत भर्ती करे कहीं। साहेब अर्जी मंगाएं उल्टिन पुल्टिन, और कहीं के हम तो कोनो योग्यता के कगजे नहीं लगाए, कैसन के हुई। ज्योतिषी जी पुन कहीं कि कुछ करी, तो साहेब उपाय बताएं कि संस्कृत के कोनो बड़ा विद्वान प्रथमा संस्कृत के योग्यता लिख के दई दे तो हो जी। प्रेम दत्त के दादा बहुत खुशी भी हैं कि हमार भाइन हमका इतनी योग्यता के कागज लिख के दई दें। 2 दिन बाद छुट्टी के दिन दोपहर के समय अपने ककियोत भाई के लगे गए, वो माचा में पहुड़े रहा। जब प्रेम दत्त के दादा उनसे अपन बात बताएं तो दूसर कर्मट ले लिहीन, कुछ बोलबई नहीं भी। प्रेम दत्त के दादा समझ गए कि कुछ न लिखी, बरबरात चले आए कि हम तो अपना का भगवान मान के सेवा करें, पर होगा जो उन हमारे भाग्य में लिखा हुई तो उन हुई। मियाँ के दौड़ मस्जिद तक ज्योतिषी जी के लगे पहुँचे, सगली वृदंत सुनाएं, तो ज्योतिषी जी कहें कि साँझ के जहाँ बैद बाबा के हिन जाता है वो कुछ ना लिख के दे दें, यह देखागा। बैद बाबा के लगे पहुँचे, पैलगी प्रणाम करत आपन बात कहें। बैद बाबा अपने चमकत आँखिन ते उनके मुँह कई देखत रह गए, या बात बैद बाबा के नाती सुनत रहे। वो प्रेम दत्त के दादा के नाव लेके कहें हियाँ नावा थोर कर रुका, बाबा का यहाँ कहीं कोई चले जा दे, हम तो उनका बहुत निकाह लिख के दे। आसरा बंधी प्रेम दत्त के दादा रोज की नाई इलाज कूटब छानब पुरिया बनावे में लग गए। जब बैद बाबा के नाती नंदनंदन जी का मौका मिला, आयुर्वेद विद्यालय जो उनके बाबा के नाव पर रहा कि छपी सुंदर सर्टिफिकेट माँ प्रेम दत्त के दादा के नाव गाँव लिखत, उनका आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथन के जानकार और इलाज करे में बहुत होशियार हो के प्रमाण पत्र मोहर लगा के दी। वह लेख लिए पुन के ज्योतिषी जी के लगे गए, वो तो प्रेम दत्त के दादा के भाग विधाता रहें। वो प्रमाण पत्र का देख के ज्योतिषी जी कहें अब तो उनका सब कुछ मिलेगा। उनका लेके उन साहेब के नियरे गए
जिका चाकरी देकर हुकुम देकर।

0: साहब सर्टिफिकेट दिखिन कहीं अपना आप निसोच रही। यहो बताई दी कि कहाँ करे का है। चार छः दिन में प्रेम दत्त के दादा का गांव के लगन के कस्बा में औषधालय खोल के काम करे का हुक्म मिलगा। ज्योतिषी जी के लगे पहुँच के उनकर गोड़ छू के प्रेम दत्त के दादा कहीं कि आपन तो नहीं भे पर अपना की कृपा ते मुँह हुए बाचाल पंगु चढ़ें गिरवर गहन जे स्कूल के मुँह नहीं दिखे रहा वो कानी कहीं सरकारी चाकरी मिल गए। ज्योतिषी जी कहीं कि सब ऊपर वाले की कृपा है। वैद्य बाबा के हिंत मिले हों छपे कागज का उनका लड़का जुओ जुए के रखे है। प्रेम दत्त के दादा रिटायर भय पर अपने गांव में रह लागे। मेड़ोरे कर जो कोई इलाज करावे आमा तो उनकर सैंतीन में इलाज करा जब तक जिए सरकारी पेंशन पावत रहें। घरे में सुख संपन्नता रही। उनका लड़का प्रेम दत्त कॉलेज के पूर्व पढ़ाई करके निकही चाकरी पाइस और उनके जीत राजपत्रित अधिकारी होकर रिटायर भा। अतने नहीं उनकर बड़किया पतो जब काज भतै तब छठवें पास रही। फिर अपने मेहनते विश्वविद्यालय के सबसे ऊंच डिग्री डीलिट पाइस और बिटियन के कार्य प्रोफेसर के पद से रिटायर भय। प्रेम दत्त के दादा के मन में सच्चाई और ईमानदारी कूट कूट के भरी रही। उनकर बड़कवा नाती डॉक्टर हो के जब सरकारी नौकरी में जाए लाग तब वो का असीसत कहीं के मुन्ना अनाप शनाप पैसा न कम है गरीबन के केर सहायता करे। दूसर नाती इंजीनियर है सबसे छोट वाला आपन महाविद्यालय चलावत है समिति अपने बाबा के नाव पर बनाई से ये सब अपने जीते दिखिन और एक दिन 81 साल के उम्र में एक दिन का विराम होके ये लोग विदा हुई। प्रेम दत्त के दादा के वृतांत सुन के उनके गांव के एक पढ़े लिखे मनई कहीं कि गजब होगा। यही का कहा था माँ कि विधि लीलारे माँ जो उन लकीर खींच दी सी वो का को मिटा नहीं सकत।
1: भैया बहन अब या बघेली कहानी सुनत हैं विधि के लकीर और एक सुनावर रहे डॉक्टर सुधाकर तिवारी। भैलो हमारे देश में ऐसे महापुरुषन के अवतरण या धरती में भा जे अपने कृतित्व व्यक्तित्व से विकास के राह दिखाएं। आज हम सब भारत माता के उवा अमर सपूत का स्मरण कर रहे हैं जे अपने जीवन के हर क्षण का देश के आज़ादी खाते समर्पित कर दिए। वो महान क्रांतिकारी रहे राम प्रसाद बिस्मिल। भैलो राम प्रसाद बिस्मिल केवल क्रांतिकारी बस नहीं रहे बल्कि एक उत्कृष्ट कवि लेखक संगठनकर्ता और राष्ट्रभक्त रहे। उनका जीवन त्याग साहस समर्पण और देशभक्ति के अद्भुत मिसाल रहा। उनका जयंती हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का याद दिलावा थे। भैलो राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म 11 जून 1897 का शाहजहांपुर में भरा। उनके पिता के नाम मुरलीधर और माता के नाम मूलमती देवी रहा। लड़कियों से उनमें तेज बुद्धि स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना रही। आज समाज की विचारधारा के उनके जीवन में गहिर प्रभाव पड़ा। विशेषकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा उनके जीवन का नई दिशा दिश उस सत्य स्वदेश प्रेम और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के राह अपनाएं। राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी अद्भुत कवि निर्भीक राष्ट्रभक्त और युवकन के प्रेरणा स्रोत हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरन से अंकित हैं। वो अपने अदम्य साहस से यह सिद्ध कर दीन कि देश प्रेम से बढ़ के कौनो दूसरा धर्म नहीं हो। उनका जीवन हमें राष्ट्रभक्ति स्वाभिमान साहस और कर्तव्य निष्ठा के संदेश देता है। आज उनके जयंती के अवसर में उनके जीवन विचार साहित्यिक योगदान और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का याद कर रहा है। भैलो लड़कियों से उनमा तेजस्विता आत्मसम्मान और देशभक्ति के भावना कूट कूट के भरी रही। उनकर माता उन्हें धार्मिक और नैतिक संस्कारधीन। जब भारत अंग्रेजी शासन के गुलामी में जकड़ा रहा देशवासियों में मेवे के अत्याचार होत रहा तो ओका देख के बिस्मिल के हृदय बहुत व्यथित हो उठत रहा। उनसे कहन कि भारत का स्वतंत्र करावे के नेता आपन सर्वोच्च निशावर कर देव। वो केवल भाषण तक सीमित नहीं रहे बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े। उनका मानव रहा कि स्वतंत्रता हर राष्ट्र के जन्म सिद्ध अधिकार होता है और ओखा पावे खातिर हर मेर के त्याग की जा सकत है। राम प्रसाद बिस्मिल युवकन का संगठित करके स्वतंत्रता आंदोलन का नई दिशा देने। भैलो उमहान

क्रांतिकारी रहे, आज उनका समूचा राष्ट्र सुधिकई रहा है। ऐसने महान क्रांतिकारी देशभक्ति का हमारा देश स्मरण कर रहा है। आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनके त्याग, बलिदान, साहस और राष्ट्रभक्ति के अनुपम गाथा का समूचा राष्ट्र याद कर रहा है। उनके जयंती के अवसर में समूचा राष्ट्र व अमर शहीद का श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जब जब देशभक्ति के माँ चर्चा हुई, जब जब अपने देश माँ देशभक्ति के चर्चा की जाई, तब तब यह धरामा राम प्रसाद बिस्मिल के नाम सबसे ऊपर रखा जाए।

भैया बहनी, अब भैया विकास गीत सुन रहे हैं प्रमोद तिवारी के बाबा अभूत चले के जुम्मन तो लिखी कार्यक्रम के पता कार्यक्रम चौपाल के चिट्ठी द्वारा उप निर्देशक आकाशवाणी पोस्ट बैग नंबर 6 रीवा मध्य प्रदेश पिन कोड है 48601 यह पता मरी पाते के परिखा अब्दुल आज्ञा चौपाल कार्यक्रम के सभी सुनिए भैया बहनी हरिंका सुषमा बहनी के राम राम जय जवान जय किसान।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
2: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के

0: बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ, और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं? क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आपका।
0: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
1: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है, और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
0: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर है आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
1: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है।

0: हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मी और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़। देखिए, इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं।

0: पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट

0: अवसर ढूंढना राजनीति के, ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें, और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक नहीं, अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाए तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि

0: नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से, जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाए और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाए, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं।

0: वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ एआर वीआर एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी

0: सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा, पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारे दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको

0: पब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे, उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष साइंस एंड टेक। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कश्मीर की कली फिल्म का गीत, SH बिहारी के बोल हैं और संगीत OP नैयर का।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में ममता फिल्म से। मजरू के बोल हैं और रोशन का संगीत।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: होती है। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: Peace and stability in the region.
1: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: The visit will provide an opportunity.
5: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
4: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
6: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को

0: मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशारानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में, उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा

की। अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वाजे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यू की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम मिलेगा और दरामदात पर इन्हिसार में कमी आएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इससे शुमाल मशरक में अमन और इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी, इससे सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। भारत ने आज अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया।

0: कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए बहुत सी अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीब के लिए मकान मोदी हुकूमत की तवज्जो का अहम शोबा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रियासतों को 4 करोड़ से ज्यादा मकानात देही इलाकों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों के लिए सौंपे गए हैं। गजा की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान पीएम सेवा निधि स्कीम के तहत अभी तक खांचा फरोशों को 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफ़ुज़ का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेजी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाजे के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तशवीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायजा लेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप 2026 का आगाज आज मेक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम स्टेडियो एस्टिका में होगा। इसके साथ ही एक माह से ज्यादा अरसे तक चलने वाले इस अजीमुश्शान टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। इफ्तिताही मुकाबले के ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब तक का यह सबसे बड़ा आलमी कप होगा जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 104 मैच खेले जाएंगे जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होंगे। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जान तलब हो गई। उसने अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ खूबसूरत गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म से ली गई गजल आशा भोसले की आवाज में। कलाम है शहरयार का और धुन बनाई है खयाम ने। आइए सुने इस प्यारी सी गजल को।

जगजीत सिंह की आवाज में आइए अब सुनते हैं सरफरोश फिल्म से ली गई गजल। बोल है निदा फासली की और सुरों में ढाला है जतन ललित ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीत से सजी हुई गजल फिल्म अर्थ से। आवाज़ है चित्रा सिंह की और कलाम है इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी का।

कार्यक्रम में अगली गजल हमने ली है फिल्म निकाह से। गुलाम अली की आवाज़ है और संगीत भी गुलाम अली का, कलाम हसरत मोहानी का। आइए सुने ये खूबसूरत गजल।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अदालत फिल्म से ली गई गज़ल। शायर है राजेंद्र कृष्ण और तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

इस खूबसूरत गज़ल के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और उनका पूरा परिवार सुनना चाहता है नमक हलाल फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। अनजान का लिखा हुआ ये गीत है और धुन बनाई है पप्पी लहरी ने। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी का ये प्यारा सा गीत। बोल हैं जावेद अख्तर रुमानी के और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीमा बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सलिया शुएब खान, पोतरा मुजताबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाद अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और एक और पत्र है हमारे हाथ में जिसे भेजा है गौतम नगर नादेंड से प्रभाकर जोतले और आरती जोतले ने। तो आइए सुनते हैं ये पसंद का गीत।

पार्टी दंतरेगी से भागवत वर्मा, और एक और पत्र मिला है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा का। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं अभिमान पिक्चर फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में मजरू की बोल है और तर्ज बनाई है एसटी परमन ने।

कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पाकिजा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह की बोल है और संगीत गुलाम मोहम्मद का। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे श्रोता विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ओम प्रकाश नीमा, श्रीमती किरण नीमा, आकाश, विकास, नंदनी और पूरा नीमा परिवार, और फरमाइश भेजी है बनियाबारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद, अमित, लक्की, श्रेया, पूनम वाधवानी और पूरा माखीजा परिवार।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचालिया, प्रियंका पंचालिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचालिया। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं सुर फिल्म का गीत लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। निदा फाजली के बोल हैं और संगीत

इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए रहमत अली खान का सरोद वादन, राग है रागी श्री। तबले पर संगत की है सलीम अल्लाह वाले ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे रहमत अली खान का सरोद वादन, राग था रागीश्री। तबले पर संगत कर रहे थे सलीम अल्लाह वाले। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से

बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस दो दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025

प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025